0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: पंकज जी कोटा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग तीर्थ स्थान पर तीर्थ यात्रा करते हैं, जबकि भगवान सभी जगह हैं, कण कण में हैं, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी?
2: मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तो हम तुम्हें समझे नहीं ना। उसकी एक प्रक्रिया है ना। उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। तो आपको दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में। उसकी एक प्रक्रिया है, उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे परमात्मा सर्वत्र है, चीर फाड़ डालो किसी को कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना। साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए, तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी, इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं तो वो भाव भगवान को समर्पित हो जाते हैं और हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। जब हमारा भाव बन जाए ना तो हम कुत्ते से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं, हमारा भाव बन जाए तो हम ईंट से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं, हमारा भाव ना बने तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे दुर्योधन को, दुर्योधन का भाव नहीं है भगवान के प्रति। तो श्री कृष्ण को एक बहुत विद्वान प्रवीण यदुवंशी समझता, वो भगवान नहीं मानता, दुर्योधन भगवान नहीं मानता। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बंदी बनाने की कोशिश की, वो भगवान को मनुष्य मानता रहा, कभी भगवान नहीं माना। तो बात समझ में नहीं। ये जो तीर्थ बने हैं ये पावर है, अध्यात्म के पावर है। जैसे गंगा जी नहा के आप देखो कैसा लगता है, एकदम फ्रेश, लेकिन नियमानुसार। अब गए कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो और मल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा। गए साष्टांग दंडवत किए, माथा में जल रखा और गए चुपचाप 5, 7, 11 डुबकी लगाई, एकदम बाहर हो गए, देखो एकदम आनंद आएगा। वृंदावन आयो, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत, रजरानी लगाओ, नाम जप करो, जब जाओगे तो एक अच्छा अनुभव होगा, एक आनंद अनुभव होगा। अब यहीं आओ, इधर उधर सब गंदगी करो तो जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये परम पवित्र स्थान बनाए गए हैं कि हमको अध्यात्म का सहयोग मिले, हमारे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो नष्ट हो जाए। भगवान सर्वत्र है, पर जैसे दूध में सर्वत्र घी है, दूध से काम नहीं चल सकता, उसका प्रक्रिया। तो ऐसे प्रक्रिया का मतलब साधना। तो साधना का प्रारंभ करने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए वो गंगा है, काशी है, जो बड़े बड़े तीर्थ है, इनमें इसीलिए जाया जाता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे कोई ना कोई पाप बन जाते हैं, तो इन तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है। अवश्य जाना चाहिए, पर जिस पद्धति से रहना उसी पद्धति से रहना। हर तीर्थ में एक दिन उपवास करना चाहिए, अगर 3 दिन वास करे तो 1 दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए, तीसरे दिन अन्नाहार करना चाहिए, 1 दिन तो प्योर पूरा ऐसे जल पे रहना चाहिए या ऐसे कष्ट सहना चाहिए तीर्थों में जाकर। 1 दिन उपवास करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी जी के दर्शन करो, यमुना स्नान करो, यमुना जी के पास बैठकर नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, ये कमाओ। जो तीर्थ स्थानों में परम पवित्र भाव कमाए जाते हैं वो एक, लेकिन बड़ा विचित्र है, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी बात करेंगे, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी क्रियाएं करेंगे, इधर उधर सब गंदी बातें करेंगे, तो धाम का फिल आप कहाँ मिल पाएगा। तो समझ पाते, जरूर जाना चाहिए।
3: और महाराज जी, जैसे इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, कभी कभी वहाँ पे अनहोनी हो जाती है, इंसान भगवान को पाने जा रहा है।
2: आप हमारी बात सुनो, अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव, शरीर तो छूटना ही है, राइट टाइम है शरीर का, और अगर वो हरिद्वार में शरीर छोड़ता है, वो वृंदावन में शरीर छोड़ता है, काशी में छोड़ता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बढ़िया लाभ मिला, शरीर तो छूटना ही था, लेकिन शरीर ऐसी जगह छूटा कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इसमें लाभ हुई कि हानि हुई?
3: लाभ।
2: हाँ, तो हमें निगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। काशी है, वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, गंगा का तट है, यमुना का तट है, इनके किनारे प्राण निकलते हैं तो जीव की उत्तम गति होती है। प्राण तो निकलने थे लेकिन यहां निकले, ये उत्तम गति हुई। जैसे आपके 100 रुपया जेब से बिहारी जी के सामने कट गए तो निश्चित मान लो करोड़ों का नुकसान होना था। आप वृंदावन आए तो धाम की कृपा से मात्र 100 रुपये में वो कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। अब वो अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचते तो निगेटिव सोचकर जलोगे, तुम आए ना तो तुम्हारा मंगल हो गया, करोड़ों का नुकसान भगवान ने 100 रुपये में निपटा दिया। या ठोकर लगी, थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि थोड़ी सी चोट में निपटा दी, उसे हम निगेटिव क्यों सोचे, उसे हम पॉजिटिव सोचे। जो सत्य है, जो सत्य है, ये परम सत्य है, कोई बहानेबाजी नहीं, ये परम सत्य है। एक दो मित्र थे, एक जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, और उसने देखा कि वो हमारा मित्र जो भटक गया गंदे आचरणों में वो आ रहा है। तो जो गंगा नहा के आ रहा था एकदम आह, नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में, नंगे पैर गंगा नहाने गया था। और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था, तो एक थैली मिली असरफियों की। तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रटता है, क्या हुआ, देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूं और देख ये थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं, चाहे वो ग्रंथ रूप मिल जाए या कोई संत मिल जाए। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं, तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका अब ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तब उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है, तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो, और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था, और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहां भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहां हटा इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं, पॉजिटिव बात हम सोचे, नहीं तो हमें भगवान की इस मंगल में विधान में अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल सिरी में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
13: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
14: रेडियो रिमझिम 90.4। अब स्वीकार करी आपन दोस्त दीपाली के सुप्रभात प्रणाम। दोस्त लोग, अभी हम लेके आ गए बानी अपना साथ स्वास्थ्य खजाना से भरल कार्यक्रम, आपन दी आपन देखभाल। जे में हम लावेनी रउआ स्वास्थ्य खातिर कुछ हर्बल उपाय, जैसे राउर स्वास्थ्य रही बेहतर आ रहेम रउआ खुशहाल। तो चली आज के कार्यक्रम की शुरुआत कई जाओ। दोस्त लोग, आज हम बताएं बबूल के बारे में। कड़वा रस में मधुर, विपाक में कड़वा, गुड़ में रुच सिनग्ध और भारी होला। ये प्रकृति में ठंडा, संकोचन करे वाला, जलन शामक, मूत्र लावे वाला, विष के नाश करे वाला, श्वेत प्रदर, गर्भाशय के स्त्राव। और सूजन दूर करे वाला, घाव के जल्दी भरे वाला, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, व्रीय विकार, खांसी, प्रमेह, मुंह के छाला एवं दांत के रोग मिटावे वाला। तथा शरीर के बल और पौरुष शक्ति बढ़ावे वाला होला। एक रासायनिक तत्व ई होला कि बबूल के छाल, पत्ता और फल में टैनिक और मैलिक एसिड नामक तत्व पावल जाला, परंतु सबसे अधिक टैनिक छाल और कली में होला। ऐसे प्राप्त गोंद में शंकरा, मैलिक एसिड, एरेबिक एसिड, छार, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम नामक तत्व भी पावल जाला। खातिर बबूल के छाल, पत्ता व फल प्रयोग में लावल जाला। दोस्त लोग, आई जानल जाओ बबूल के रोगोपचार के बारे में। दांत के रोग में रोजाना बबूल के कोमल टहनी के चबावे से ढीला दांत मजबूत हो जाला और मसूड़ा से खून आवल भी बंद हो जाला। यदि दांत बहुत मैला हो गईल होके तो दंत मंजन इस प्रकार तैयार करी कि 60 ग्राम बबूल की लकड़ी, 24 ग्राम भूनल होकल फिटकरी और 12 ग्राम सेंधा नमक लेके बारीक चूर्ण बना ली। और रोजाना ऐसे मंजन करी तो ऐसे दांत रोग दूर हो जाए। शीघ्र पतन और प्रमेह में बबूल के 5 कोमल कोपल के छाया में सुखा के चूर्ण बनाई आ में बराबर के मात्रा में मिश्री मिला के सुबह शाम 1-1 चम्मच के मात्रा में लेवे से शीघ्र पतन और प्रमेह में लाभ होला। बबूल के कली के छाया में सुखा के बराबर मात्रा में मिश्री मिला दी और कुछ समय तक एक एक चम्मच के मात्रा में सुबह शाम लेते रहे से वीर्य संबंधी प्राय सब दोष दूर हो जाए। पसीना अधिक आवत होके तब बबूल के पत्ता और छोटा हरड़ समान मात्रा में लेके चूर्ण बनाई। चूर्ण से पूरा बदन पर मालिश करे से अधिक पसीना आवल रुक जाए। आ मालिश के एक आध घंटा के बाद स्नान कर ली। कमर के दर्द में बबूल के फली गोंद और इछाल के बराबर मात्रा में लेके पीस ली। आ दिन में 6-6 घंटा के अंतराल पर रोजाना जल के साथ सेवन करे से कमर दर्द में राहत मिली। में सुबह शाम 2-2 चम्मच के मात्रा में कुछ दिन तक बबूल के छाल के काढ़ा पिए से श्वेत प्रदर में काफी लाभ हुई। यदि बबूल के गोंद के देसी घी में तले के बाद सुबह शाम 1-1 चम्मच के मात्रा में कुछ दिन तक दूध के साथ सेवन कर जाए तो ई रोग में लाभ हुई। हिचकी में यदि कोनो उपाय से हिचकी आवल बंद नहीं के होत तब बबूल के कांटा की मात्रा 5 ग्राम के जौकुट करके आधा सिर पानी में उबाल के काढ़ा बना के और ओई में थोड़ा सा शहद मिला के पियल जाए तो बराबर उठे वाला हिचकी भी बंद हो जाए। शरीर के जलन दाह सुजाक के जलन और चर्म रोग में 10-15 ग्राम जल में 10-15 ग्राम बबूल के कोपल और गोखरू रात के भिंगा दी। आज सुबह पानी में ई सब द्रव के मसल के पी ली। ऐसे ई सब रोग के साथ साथ पेशाब में होके वाला जलन भी दूर हो जाए और पेशाब भी खुल के आवे लगी। दोस्त लोग अब हम बतावे जात बानी अंजवाइन के बारे में। अंजवाइन के पत्ता में विटामिन खनिज पाचक तत्व प्लांट हार्मोन्स और स्थिर तेल होला। ये तेल से तंत्रिका जाल के प्रशमित कई जाला। ऐसे मन के शांति मिलेला। एकर बीज पेट में संचित वायु के बाहर निकालेला, मूत्र प्रवाह बढ़ावेला और यौन शक्ति बढ़ावे में मदद करेला। इमे उत्तेजना और हल्का जुलाब लावे के भी गुण होला। इसे अनचाहा गर्भ के गिरावल जा सकेला तथा आक्षेप संबंधी उपद्रव के भी शांत कइल जा सकेला। और गठिया में अंजवाइन में क्षार तत्व अत्यधिक मात्रा में पावे जाए के कारण ई अम्लीय प्रभाव के दूर करे में सक्षम है। यही कारण ई अम्ल विष वात रोग और गठिया में अधिक लाभदायक है। एकर बीज के रस निकाल के सेवन करे से ई रोग में लाभ हुई। अर्थराइटिस रोग में अंजवाइन में उच्च मात्रा में सोडियम पावे जाए के कारण ई जोड़ में लाइम और मैग्नेशिया के जमे ना देवेला। ई ऐसन विजातीय और हानिकारक तत्व के पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देवेला जिससे जोड़ के दर्द और सूजन दूर हो जाए। लाभ खातिर एकर ताजा पत्ता के रस पिए के चाहिए। सामान्य कमजोरी में अंजवाइन के जड़ के छाया में सुखा के चूर्ण बनाई। दिन में दो बार एक एक चम्मच चूर्ण शहद के साथ सेवन करे से कुपोषण और अन्य कारण से उत्पन्न होके वाला कमजोरी दूर हो जाए। अनिद्रा में यानी नींद लावे खातिर अंजवाइन एगो उत्तम साधन है। एकरा पत्ता के रस शहद में मिला के रात के सूते से पहले सेवन करे से तनाव कम हुई और गहरी नींद आई। अपच दूर करे खातिर अंजवाइन के बीज एगो उत्कृष्ट उपाय है। एकर बीज के लस्सी में 5-6 घंटा भिंगाई और फिर उ लस्सी के एमे घोट के पी जाए। यदि चाही तो एमे थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल दी। व्यक्ति क्रम में समान मात्रा में अंजवाइन और गाजर के रस पिए से नाड़ी मंडल में व्याप्त कमजोरी दूर हो जाए, जैसे एक अनेक व्यक्ति क्रम के शमन हुई। तो दोस्त लोग, आज हमने के जर्नी हसन बबूल के बारे में और अंजवाइन के बारे में, तो फिर कल हो हम कुछ दूसर नुस्खा लेके आए। तब तक खातिर दी हमरा के यानी आपन दोस्त दीपाली के जाए के अनुमति और रखी रहुआ आपन सेहत के ख्याल, रही खुशहाल। नमस्कार।
15: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
16: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
17: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
18: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
19: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
17: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
16: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
17: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
19: कॉल करें 87-894-18744।
20: ठक ठक।
21: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
22: अच्छा मिला ही नहीं।
21: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
23: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
21: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
23: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
24: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
25: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
17: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
19: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
17: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
19: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
17: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
19: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
17: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH-27 गोपालगंज।
19: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
26: अरे यार, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही।
27: मुझे लगता है आज रात हमें यही रुकना पड़ेगा।
28: हाय गाइस, वो बहुत बारिश हो रही है, यहाँ एक ही टेबल है और मैं यहाँ अकेला ही हूँ। Would you mind sharing a table?
26: No problem, dude. Come, come. By the way, I'm Sam.
28: Hi, I'm Neil.
26: और ये है हमारा गैंग. Guys, this is Neil.
27: Hi, I'm Reema.
28: Hi, Reema. Hi, guys.
0: वो बाइक जो पार्किंग में है, क्या वो तुम्हारी है? मैं एक बार प्लीज चला सकता हूँ? सारा क्या था ये?
1: Because you deserve it. Sorry. ऐसे ना मैनर्स नहीं है. मैं हूँ सारा एंड दिस इडियट इज आदित्य.
0: इडियट किसको बोली?
28: तुम लोग कोई ट्रिप पर जा रहे हो क्या?
27: हम ना एक्चुअली कैंपिंग करने आए थे, बट ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही.
28: हाँ, ये बारिश तो नहीं रुकने वाली है.
26: ये सब छोड़ो, यू लुक लाइक अ सोलो ट्रैवलर, राइट ब्रदर?
28: ट्रैवलर? हाँ, ये समझ लो कि मैं एक यात्रा पर हूँ, अमरनाथ जा रहा हूँ.
1: वाह, यात्रा, व्हाट अ कूल वर्ड मैन. हाउ कूल आर यू सोलो यात्री?
28: अरे सोलो कहाँ हूँ, नंदू है ना मेरे साथ.
0: नंदू?
28: मेरी प्यारी नंदू, माय कंपेनियन. मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ साथ चलती है मेरी बाइक. प्यार से मैं इसे नंदू बुलाता हूँ. 108 मकान ध्वस्त हो गए जबकि करीब 40,000 यात्री. भाई जी जरा न्यूज थोड़ी तेज करना, देखे तो मौसम का क्या हाल है.
2: ये है उत्तरकाशी के जोशियारा में तबाही की खौफनाक तस्वीर. भागीरथी नदी के रास्ते में जो कोई भी आया तिनके की तरह बह गया. कहीं मकान के नीचे की जमीन खिसक गई तो कहीं 3 मंजिला मकान ताश के पत्ते की तरह ढहकर नदी की तेज धार में समा गया.
1: गाइस, मुझे ना अब सही में डर लग रहा है.
0: सीरियसली मैन, वेदर इतना खराब हो जाएगा मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था.
27: लुक्स लाइक नेचर इज गिविंग इट बैक टू अस.
26: ऑफ कोर्स, न्यूज़ में नहीं सुना गंगा का आक्रोश?
27: बट ऑन अ सीरियस नोट, बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है यार. लोग मर रहे हैं, गांव के गांव बह रहे हैं. हाउ इज इट गोइंग टू स्टॉप?
28: लगता है स्वयं शिव को ही दोबारा आना पड़ेगा. वहीं रोक सकते हैं गंगा के आक्रोश को.
0: व्हाट? व्हाट इज दिस अबाउट?
28: व्हाट? महादेव? महादेव को नहीं जानते?
0: अरे डूड, शिवजी को तो जानते हैं, पर शिवजी ने गंगा को रोका था कब?
28: हाँ, ये स्टोरी तो बहुत पॉपुलर है. मैं बताता हूँ. कई साल पहले इश्कवाकू के राजा सागर ने एक अश्वमेध यज्ञ शुरू किया. उस यज्ञ को सफल होता देख इंद्र को ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने उस यज्ञ के अश्व यानी घोड़े को उठा लिया और महर्षि कपिल की कुटिया के पास बांध दिया. उसके बाद
3: हमारे यज्ञ के अश्व का हरण हुआ है. मेरे 1,000 से भी अधिक पुत्र होकर भी एक अश्व का ख्याल नहीं रख सके. जाओ, शीघ्र जाओ तुम सब और पता लगाओ कि हमारे यज्ञ में कौन बाधा डाल रहा है. मुझे वो अश्व वापस चाहिए, चाहे उस अपराधी को मृत्यु दंड भी देना पड़े तो दो, पर उस अश्व को वापस लेकर आओ.
4: हम उस अपराधी को अवश्य ढूंढेंगे पिताश्री, आप चिंता ना करिए. चलो भाइयों.
5: वो देखिए भैया, हमारा अश्व.
4: वाह,
5: ये क्या? ये तो महर्षि के कुटिया के पास बंधा है.
4: रुक जाइए महर्षि, आप पापी हैं. हमारे पिताश्री के अश्वमेध यज्ञ को रोककर आप तपस्या कर रहे हैं.
5: हमने कहा रुक जाइए, आपने अभी तक हमारा बल नहीं देखा महर्षि, अभी दिखाता हूँ.
6: ठहरो मूर्खो, क्या तुम्हें आभास है? तुमने महर्षि कपिल की सालों की तपस्या भंग की है. घोर पाप किया है तुमने, घोर पाप. तुमने एक क्षण में मेरी सालों की तपस्या को भस्म कर दिया है. इस भूल के लिए मैं महर्षि कपिल तुम सबको श्राप देता हूँ. इसी तरह तुम सभी यही भस्म हो जाओगे और तुम्हारी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी.
8: कृपा करें महर्षि, कृपा करें. मैं महाराज सागर का इकलौता पौत्र अंशुमन हूँ. आपने महाराज सागर के सारे पुत्रों को भस्म कर दिया. हम पर कृपा करें महर्षि और मेरे सारे पूर्वजों को मुक्ति दे.
6: तुम्हारा कोई अपराध नहीं है अंशुमन, इसलिए मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा. तुम्हारी पीड़ा दूर करने के लिए मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर तुम्हें यह अवश्य बता सकता हूँ कि तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही उपाय है अंशुमन. माँ गंगा तुम्हारे पूर्वजों को पवित्र बनाकर मेरे श्राप से मुक्त कर सकती है. अगर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करोगे तो शायद वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे।
26: आशीर्वाद दे महर्षि, मैं अभी ब्रह्मदेव की पूजा आरंभ करता हूँ।
7: इसके बाद अंशुमन ब्रह्मदेव को खुश करने की कोशिश में जुट गए, पर वो सफल नहीं हो पाए। उनके बाद उनके बेटे दिलीप ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहे। जब दिलीप अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने अपने बेटे भगीरथ को बुलाया।
9: भगीरथ, हम हमारे पूर्वजों की आत्माएं अभी भी मुक्ति नहीं पा सकी, सब तड़प रहे हैं। मेरे पिताजी और मैं उन्हें मुक्ति नहीं दिला पाए पुत्र। अब ये तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें ही ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके देवी गंगा को इस धरती पर लाना होगा। इस धरती पर लाना होगा पुत्र।
10: पिताश्री, हमारे पूर्वजों की आत्माओं को मैं अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा।

0: भगीरथ आंखें खोलो पुत्र।
1: ब्रह्मदेव, धन्य हो गया मैं। ब्रह्मदेव, आपने मुझे दर्शन दे दिए, मेरी वर्षों की तपस्या का फल मुझे मिल गया।
0: मैं तुम्हारी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ पुत्र। कहो भगीरथ, क्या वरदान चाहते हो?
1: महर्षि कपिल के श्राप से मेरे सारे पूर्वज भस्म हो गए, किंतु भस्म होने के बाद भी वो मुक्त नहीं हो पाए। महर्षि कपिल अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे ब्रह्मदेव, इसलिए महर्षि ने बताया कि केवल माँ गंगा ही है जो उन सबको मुक्ति दिला सकती है।
0: ठीक है पुत्र, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हारी इस पीड़ा को अवश्य दूर करूंगा। तथास्तु। देवी गंगा, ये आपका अपमान या अनादर नहीं है। आपसे अधिक पावन इस त्रिलोक में कोई नहीं है, इसीलिए मनुष्य के पाप केवल आप ही धो सकती हैं।
2: आप चाहे जो भी कहे ब्रह्मदेव, मेरे लिए धरती पर जाना अपमान समान ही है। और यदि फिर भी आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं धरती पर जाऊंगी नहीं, गिरूंगी, किंतु धरती मेरा भार नहीं ले पाएगी। मेरे भार से धरती का नाश होगा, धरती का नाश।
0: भगीरथ पुत्र।
1: जी ब्रह्मदेव, आप यहाँ?
0: पुत्र, तुम्हारी इच्छा अनुसार देवी गंगा धरती पर जाने को तैयार है, किंतु।
1: किंतु क्या?
0: गंगा देवी धरती पर अवश्य आएंगी, किंतु उनकी धारा का भार ये धरती नहीं ले सकेगी। धरती संकट में है।
1: ब्रह्मदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या देवी गंगा को रोकने वाला कोई नहीं है?
0: है, केवल एक ही है पूरी सृष्टि में जो देवी गंगा को रोक सकते हैं।
1: कौन है वो?
0: देवों के देव, महादेव।

0: महादेव, मैं कई वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा हूँ अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए।
1: तुम्हारी नीयत बहुत नेक है पुत्र, देवी गंगा तुम्हारी सहायता करेंगी।
0: किंतु महादेव, देवी गंगा तो
1: मैं जानता हूँ पुत्र, देवी गंगा बहुत क्रोधित हैं, पर उन्हें मैं रोक सकता हूँ, तुम निश्चिंत रहो।
0: मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा ईश्वर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
2: कौन है जो मेरी धारा को रोकने का प्रयत्न कर रहा है?
3: रुक जाओ देवी गंगा, मैं हूँ शिव। तुम्हारी धारा का संवेग इस धरती को नाश कर सकता है, इसलिए रुक जाओ।
2: महादेव, मेरी धारा अब रुक नहीं सकती, और यदि आप भी इस प्रवाह में बहना नहीं चाहते हैं, तो मेरी धारा के रास्ते पर बाधा ना डालें।
3: ठहरो गंगा, अन्यथा मुझे खुद तुम्हें रोकना होगा।
2: आपका ये प्रयत्न व्यर्थ है ईश्वर, हट जाए वहाँ से।
4: आपने मुझे रोक तो लिया, किंतु भगीरथ की इच्छा पूरी कैसे होगी? जैसे ही आप मुझे अपनी जटाओं से मुक्त करेंगे, मेरा संवेग बढ़ जाएगा।
1: मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था देवी, और भगीरथ की इच्छा तो पूरी होगी ही, इसलिए आप भी जान लें, मैं अपने जटाओं को खोलकर आपको सात धाराओं में मुक्त करूंगा, और भगीरथ आपको अपने पूर्वजों तक ले जाएगा। आपकी एक धारा इस धरती पर ही रहेगी, और मनुष्यों के पापों को धोकर उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाएगी।
5: इस तरह शिवजी ने माँ गंगा को और उनके आक्रोश को संभाल लिया।
6: ये तो शिव ही कर सकते थे।
7: हाँ, बट अभी हमें यहाँ कौन बचाएगा? यहाँ तो शिव नहीं है ना?
5: हैं तो, तुम्हारे सामने बैठे हैं।
8: ओ मिस्टर नील, आप अपने आप को शिवजी समझते हैं?
7: कुछ भी डूड, पता है कि नहीं, सालों साल तपस्या करते हैं ऋषि मुनि लोग इस सब के लिए।
5: ये सच है कि उसकी खोज में ऋषि मुनि न जाने कितनी तपस्या करते हैं, बड़े बूढ़े भी उसे मिलने के लिए यात्राओं पर निकल पड़ते हैं, उसके दर्शन पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर जाते हैं। पर ताज्जुब है कि अच्छे अच्छे भी ये समझने में न जाने क्यों ये भूल कर जाते हैं कि भगवान शिव सिर्फ एक दिव्य शक्ति ही नहीं, शिव वो ताकत है जो सदा सदा बुराई के खिलाफ खड़ी रहती है। शिव तो शक्ति है जो प्रकृति में बसती है। वो कहते हैं ना, हर हर महादेव, हम सब में महादेव है, यानी देखा जाए तो शिव तो सदैव हमारे साथ हैं।
9: What a wonderful thought, Neil. I'm really impressed.
8: हाँ, that we all can see.
9: Shut up, guys.
6: But Neil, हम तो सिर्फ college students हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये nature पर हमारा थोड़ी कोई control है, और हमारे पास तो शिव जैसे कोई सुपर पावर्स भी नहीं है।
5: अरे वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। We can all contribute in our own little ways.
8: मुझे पता है, disaster management team को join कर सकते हैं, है ना नील?
5: हाँ बिल्कुल, अपने अंदर के शिव से पूछो, तुम क्या नहीं कर सकते? यंग ब्लड हो, साथ हो, अपने senses में हो, अवेयर हो, बहुत लोगों से ज्यादा privileged हो, एडवांटेज पोजिशन में हो, तो volunteer करो, फ्लड रिलीफ कैंप सेटअप करो, आर्मी को रेस्क्यू करने में हेल्प करो, फंड्स इकट्ठा करो, फ्लड से अफेक्टेड लोगों तक खाना, कपड़े और जरूरी चीजें पहुंचाने में मदद करो, और
9: नील
5: और सारा, अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखने की तरफ कॉन्शियस एफर्ट्स करो।
6: मेक सेंस, यू मेक अ लॉट ऑफ सेंस नील। गाइस कम ऑन, देखा जाए तो नील ठीक ही तो कह रहा है।
7: हाँ, वी आर अवेयर, वी कैन मेक पीपल अवेयर अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज, कि कैसे हमारी गलतियों के वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग, अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स की सिचुएशंस पैदा हो रही है।
5: बिल्कुल
6: गाइस, मैं अपने कॉलेज के ग्रुप में मैसेज डाल रही हूँ, तुम भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे लोगों को इनवाइट करो टू ज्वाइन अस।
7: थैंक्स अनिल। नील,
6: नील कहाँ चला गया?
9: चला गया शायद अपनी यात्रा पर।
10: बोलते सांस लो, लंबा लंबा सांस लो, सुबह भागो। हाँ भाई, ऑक्सीजन मिलेगा। अरे ऑक्सीजन के साथ में धुआं कितना गाड़ी का, वो देखा है तूने? नल का पानी पियो तो 30% से 80% तक प्लास्टिक फाइबर उसमें। भाई अपन लोग को सुधरना पड़ेगा, कहीं सूखा पड़ा है तो कहीं बाढ़ है, ग्लोबल वार्मिंग। इसका चर्चा बहुत होता है, कॉफी पीते पीते ये सारी बातें करने को अच्छा लगता है, मगर कुछ करना भी चाहिए। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि झाड़ लगाओ, अपने लिए नहीं अपने छोटों के लिए लगाओ। ये सारी चीजें, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजें किसने की है बाबा? ये सब इंसानों ने की है। शिव प्रकृति के रक्षक हैं, हम नहीं। हमें बनना पड़ेगा, हमें शिव की बात माननी पड़ेगी। शिव प्रकृति में बसते हैं, शिव प्रकृति के रक्षक हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
11: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
13: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
14: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
13: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
14: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
15: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
16: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
15: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
16: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
17: स्टूडियो 5 एन इस्लामिक रेकॉर्ड लेबल। For more updates, subscribe channel and press bell icon.

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। बुधवार को गोपालगंज आ सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। 40,000 से अधिक लोगों का हुआ ऑनलाइन इलाज। सड़क हादसे में ससुर और बहू की हो गई दर्दनाक मौत। गंडक नदी में डूबे एक युवक का शव पुलिस ने किया बरामद। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि का किया हस्तांतरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गोपालगंज आगमन होने वाला है, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ स्वागत की तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए DM और SP ने मोर्चा संभाला है, साथ ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता और स्थानीय विधायक गण भी मुख्यमंत्री के आगमन से उत्साहित हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बुधवार को आ सकते हैं, हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। परंतु प्रशासनिक स्तर पर तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी चल रही थी, परंतु अचानक कार्यक्रम निरस्त हो गया था। अब फिर से बुधवार को मुख्यमंत्री के आगमन की जानकारी मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे बिहार स्तर पर गोपालगंज जिले का नाम रोशन किया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने एक महीनों में 40,000 से अधिक मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श दिया है। दरअसल ई संजीवनी टेली कंसल्टेंसी अभियान चल रहा है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर परिवार या गाँव क्षेत्र से ही ऑनलाइन स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सकीय परामर्श ले सकता है। और बताया जा रहा है कि एक महीने में 40,000 से अधिक लोगों ने इस अभियान का लाभ उठाया है। गांव में रहने वाले मरीजों को अब सामान्य बीमारी के इलाज के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल की दौड़ लगाने की जरूरत कम हो रही है। गांव के नजदीकी स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते ही मरीज वीडियो कॉल के माध्यम से सीधे डॉक्टर से जुड़ रहे हैं और अपनी बीमारी के बारे में चिकित्सकीय सलाह ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ई संजीवनी टेली कंसल्टेंसी सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने के साथ साथ डॉक्टर और मरीज के बीच दूरी को भी कम कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही बताया जा रहा है कि एक महीने में 40,534 मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। लक्ष्य के मुकाबले 172% उपलब्धि हासिल कर गोपालगंज जिला पूरे बिहार में पहले स्थान पर पहुंच गया। लक्ष्य से दोगुने मरीजों को इस सेवा का लाभ मिला। आज कुचायकोट थाना क्षेत्र के सांसा मूसा के बेलवा गांव के पास नेशनल हाईवे पर एक भीषण दुर्दांत सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार एक वाहन ने बाइक सवार बहू और ससुर को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों के शव भी छत विछत हो गए। सूचना मिलने के बाद कुचायकोट पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लिया। इस दौरान जैसे ही लोगों को जानकारी हुई और स्थिति को लोगों ने देखा तो मौके पर हड़कंप मच गया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई घंटों तक आवागमन को जाम कर लोगों ने विरोध किया। प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर स्थिति को नियंत्रित किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृत दोनों व्यक्ति बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया खास गांव के रहने वाले 60 वर्षीय दीनानाथ ठाकुर और उनकी 40 वर्षीय बहू सोना देवी बताई जा रही हैं। दोनों किसी काम से मोटरसाइकिल से आए थे और इसी दौरान जाते समय कुचायकोट के बेलवा गांव के पास यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक रॉन्ग साइड से आया और बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया, जिसके वजह से दोनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया है। एक सड़क हादसा माझा थाना क्षेत्र के भड़कुइया गांव के पास का भी बताया जा रहा है। यहां देवघर से पूजा कर लौट रहे 70 वर्षीय एक कांवरिया की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक बस से नीचे उतरकर टहल रहे थे, इसी दौरान अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे कांवरिया की मौके पर मौत हो गई। मृतक कांवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामचंद्र गुप्ता बताए जा रहे हैं। माझा के भड़कुइया गांव के पास हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। दो दिन पहले गंडक नदी में डूबे एक युवक चिंटू यादव का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। लगातार गंडक नदी में सर्च अभियान चलाते हुए SDRF की टीम ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और पुलिस को सौंप दिया है। अब पुलिस आगे विधिक कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक भैंस चराकर घर लौट रहा था, इसी दौरान नदी में तेज धार के चपेट में आने से नदी में बह गया। युवक माझा थाना क्षेत्र के बलुही बाजार के पास गंडक नदी में डूब गया था और भैंसही गांव का ही यह चिंकू यादव था। पुलिस ने आज जैसे ही शव बरामद किया तो परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से पुलिस ने लगातार अभियान चलाकर शव को ढूंढने का प्रयास किया था। आज मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया और इसमें आगे की जाँच पड़ताल की जा रही है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जुलाई महीने के सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का DBT के माध्यम से आज हस्तांतरण किया गया। इसका पूरा कार्यक्रम जिला समाहरणालय में आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि अगस्त माह के पेंशन की राशि लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से भेजी गई। हस्तांतरण मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस दौरान जिला मुख्यालय में समाहरणालय कक्ष में आयोजित इस लाइव कार्यक्रम में जिलाधिकारी समीर सौरभ और सामाजिक सुरक्षा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी DPO ICDS सहित तमाम पदाधिकारीगण और सैकड़ों की संख्या में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित रहे। इस योजना का उद्देश्य वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। जिले के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 2,77,963 लाभार्थियों के खाते में 30,57,00,000 रुपए DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। DBT प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक माह की 10 तारीख को यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाने से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनी हुई है। हथुआ राज की पुष्पा शाही ने 5 लोगों पर जमीन का जाली पेपर बनाकर 8 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने हथुआ थाने में आवेदन देकर बताया कि उनकी जमीन हथुआ पैलेस के पीछे मौजा गोपालपुर में है और उनकी जमीन का कुछ लोग जाली दस्तावेज बनाकर अवैध कब्जा करने की नियत से लगे हुए हैं। उन्होंने थाने में आवेदन देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इधर जिन लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है उन लोगों के द्वारा इस आरोप को निराधार बताया गया है और उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष गीता गुप्ता के निर्देश के आलोक में कम्युनिटी मेडिएटर्स का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सौंपते हुए दायित्व बोध कराया गया। अब ये कम्युनिटी मेडिएटर्स ग्रामीण स्तर पर मध्यस्थता का कार्य कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आज जन शिकायतों पर त्वरित सुनवाई की गई। इस दौरान DSP मुख्यालय विजय कुमार मिश्रा ने लोगों की फरियाद को सुना और उसे संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया। सासामुसा रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में एक युवक को पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि युवक नशा खुरानी गिरोह का शिकार हुआ होगा, ऐसी आशंका लोग जता रहे हैं। कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने की बात लोगों के द्वारा कही जा रही है। स्थानीय लोगों के मदद से युवक को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित युवक की पहचान की है। यह कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामगढ़ का रहने वाला विनोद भगत बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सावन की आज दूसरी सोमवारी पर जिले के सभी शिवालयों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोग भोले बाबा को जल समर्पित करने के लिए सुबह से ही कतारों में दिखाई दिए। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में भी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए DMSP के निर्देश पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले शिवालयों पर पुलिस बल की तैनाती दंडाधिकारियों के साथ की गई है। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने भी अपने कार्यालय में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर बातचीत कर समस्याओं के शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। DM ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजयपुर थाना की पुलिस ने चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया है। बताया जा रहा है कि पानी वाले 5 मोटर पंप और चोरी की एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मटियारी बगीचा के पास छापेमारी की और यहां पुलिस की गाड़ी को देखकर आरोपी भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को खदेड़कर पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में नौशाद अंसारी पिता मनसरीम अंसारी साकिन मुसहरी, बिरजू राम पिता नागेंद्र राम साकिन धोबोल, तरवेज आलम पिता जमालुद्दीन अंसारी साकिन मुसहरी, ये सभी विजयपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी के पंप मिले हैं। इनके ही निशानदेही पर चोरी की घटनाओं में शामिल विधि विरुद्ध बालकों को पकड़ा गया है। दोनों विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध करते हुए इस पूरे कांड में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बुधवार को गोपालगंज आ सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। 40,000 से अधिक लोगों का हुआ ऑनलाइन इलाज। सड़क हादसे में ससुर और बहू की हो गई दर्दनाक मौत। गंडक नदी में डूबे एक युवक का शव पुलिस ने किया बरामद। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि का किया हस्तांतरण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
12: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
13: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
14: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
6: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-5-12-11-001।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710 3992 या 9765065।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388 89470 या 9198 88 6973।

0: छत के नीचे ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 86 034 48 652 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97-7-14-86-164।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555485507 या 91629335388।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।

0: और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वही अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98 532 52 599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8009294921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 पर।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
3: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 62052 62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने कहा, भरत तिवारी प्रकरण में न्यायालय ने रिपोर्ट तलब करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, प्रदेश में भूमिहीन विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। और शहादत दिवस पर आज पटना के शहीद स्मारक पर हो रहा है राजकीय समारोह का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत की विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भरत तिवारी प्रकरण में न्यायालय ने रिपोर्ट तलब करने संबंधी कोई आदेश नहीं दिया है। पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में भरत तिवारी के अधिवक्ता और उनकी मां द्वारा कोर्ट के बाहर अधिवक्ता के बयान को असंगत बताया है। उन्होंने कहा कि गलत बयानी कर मामले में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस बयान के मीडिया में आने के बाद इसका सत्यापन कराया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय से ऐसा कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। प्रदेश की विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं FSL अब गृह विभाग के नियंत्रण में काम करेंगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार बिहार पुलिस मैनुअल में संशोधन करते हुए FSL की जिम्मेवारी बिहार पुलिस मुख्यालय से लेकर गृह विभाग को सौंप दी गई है। साथ ही फिंगरप्रिंट ब्यूरो, हैंडराइटिंग ब्यूरो और फोटो ब्यूरो की कमान भी गृह विभाग को सौंप दी गई है। नई व्यवस्था के तहत नमूनों की जांच संबंधित FSL निदेशक के नियंत्रण में होगी। अधिसूचना के अनुसार FSL के प्रशासनिक, कार्यपालक और वित्तीय मामले भी गृह विभाग को सौंप दिए गए हैं। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भूमिहीन विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने पटना में कहा कि स्कूलों और खेल मैदानों से अतिक्रमण हटाने के लिए भी तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि जिन स्कूलों और खेल मैदानों तक जाने के लिए सुगम मार्ग नहीं है, उनके लिए पहुंच पथ भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में 20 केंद्रीय विद्यालयों के लिए 5-5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिसीमन पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। श्री प्रकाश ने कहा कि फिलहाल पंचायत चुनाव की समय सीमा तय करना संभव नहीं है।
1: पंचायत के चुनाव परिसीमन के बाद होने हैं, परिसीमन के बाद पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। दोनों ही काम है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाना है, तो टाइमलाइन हम कमिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब विभाग की तरफ से जो भी सहयोग किया जाना है निर्वाचन आयोग को, सारा सहयोग दिया जा रहा है और पूरी कोशिश रहेगी विभाग की ओर से भी कि सही समय पे काम पूरा हो परिसीमन का और उसके उपरांत चुनाव कराया जाएगा।
0: गौरतलब है कि वर्तमान पंचायती राज प्रतिनिधियों का कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर तक खत्म हो रहा है। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिसीमन के बाद पंचायतों की संख्या 8053 से बढ़कर 13,000 होने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 18% अधिक राजस्व संग्रह हुआ है। उन्होंने राजस्व संग्रह विभागों की समीक्षा बैठक में बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई माह तक कुल 19,253 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया जा चुका है। यह संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18% से अधिक है। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व संग्रह में और तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई करेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में सुबह 10:30 बजे से सहयोग शिविर की शुरुआत होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। आज प्रदेश में शहादत दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान आज ही के दिन प्रदेश के 7 विद्यार्थी पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। एक रिपोर्ट।
1: अगस्त 1942 का दिन पटना की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए कुछ छात्र सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे। मंजिल थी सचिवालय पर तिरंगा फहराना। कदम आगे बढ़े, गोलियां चली और तिरंगे को थामे 7 वीर छात्र शहीद हो गए। इन शहीदों में उमाकांत प्रसाद सिंह, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, जगतपति कुमार और राम गोविंद सिंह शामिल थे। आज भी पटना का शहीद स्मारक उन अमर युवाओं की कहानी कहता है जिनके लिए तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि आजादी का सपना था। इन 7 शहीदों की याद में हर साल 11 अगस्त को प्रदेश में शहादत दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से संजय सिंह।
0: इधर शहादत दिवस पर आज पटना के शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उनके 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। क्रांतिकारी खुदीराम बोस को आज ही के दिन वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार में फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस की शहादत की याद में आज मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय कारा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश की युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत @2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
3: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: गौरतलब है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्यवाही पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के दीर्घकालिक विकास के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया के साथ उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए सड़क और रेल संपर्क को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही राजगीर का विकास ज्ञान और नवाचार नगर के रूप में किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि बिहार की प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका है। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास पर 2130 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री गुप्ता ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर प्रदेश के पर्यटन से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट की घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार ने बोधगया और राजगीर के विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन GIM वर्ष 2015-16 से लागू है। इसका मकसद खराब हो चुके वन और गैर वन इलाकों को फिर से ठीक करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि GIM के तहत वर्ष 2015-16 से अब तक 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 1,84,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर वनों को फिर से विकसित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद होती है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जैम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर कहा कि जैम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था। श्री गोयल ने बताया कि जैम पोर्टल को नया स्वरूप दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने खरीदारों और विक्रेताओं को सहायता के लिए देशव्यापी 5 अंक वाला शॉर्ट कोड 14550 जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इस दौरान पूर्णिया के श्रीनगर में सबसे अधिक 58.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, छूटे पात्र लाभार्थियों को पेंशन योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें जिलाधिकारी। हिंदुस्तान ने झारखंड में छात्र आंदोलन को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, झारखंड विधानसभा तक पहुंचे उग्र छात्र, लाठीचार्ज। प्रभात खबर ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हर प्रमंडल में गुरुकुलम विद्यापीठ, बक्सर से शुरुआत। दैनिक भास्कर लिखता है, यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर की इस हफ्ते आएगी। आज अखबार ने पटना में तिरंगा यात्रा की खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, 14 करोड़ लोगों की जन भागीदारी है हर घर तिरंगा अभियान। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने का समय 2028 तक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने कहा, भरत तिवारी प्रकरण में न्यायालय ने रिपोर्ट तलब करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, प्रदेश में भूमिहीन विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। और शहादत दिवस पर आज पटना के शहीद स्मारक पर हो रहा है राजकीय समारोह का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
7: टॉब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
11: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
10: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
11: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
10: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 6205262112 पे।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
13: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
13: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: Now pick it up,
17: hello.
16: Now pick your phone up,
17: hello.
16: Pick it up,
17: hello.
16: Now pick your

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हाँ हेलो।
1: हेलो
2: जी।
1: हाँ, नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: मैम गाना सुनना है।
2: जी जी, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: सावन का महीना।
2: सावन का महीना पवन करे शोर।
1: हाँ।
2: अच्छा जी, और गाना डेडिकेट भी है। बोल रहे हैं गाना किसी को सुनाना भी है
1: जी?
2: बता दीजिए।
1: अपने पति को सुनाना है।
2: अच्छा जी, बढ़िया है। अपने पति का नाम भी बताएंगी? अच्छा, आप सभी ठीक है ना? जी जी। वैसे आप रेडियो रमजिम कितने दिनों से सुनती हैं?
1: बहुत दिन से सुनते हैं।
2: अच्छा, रेडियो रमजिम का कौन कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है?
1: आपको यही अच्छा लगता है गाना वाला? शौक है जो दिल में रहता है, बोलो और सुनो।
2: हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए फिर, अच्छा है आपको अच्छा लगा रेडियो रमजिम में कॉल किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: वेलकम।

0: नमस्ते मैडम
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: मैं राजू बोल रहा हूँ गुजरात सिलवासा से।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, अपना बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ।
0: और तुमको गाना सुना था मैडम?
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: सावन का कोई गाना सुना दीजिए नया खेसारी लाल का।
1: अच्छा, और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
0: हाँ हाँ, सभी दोस्तों को और सबने जितने रेडियो टीम वाले हैं हमारे साथ।
1: वैसे रेडियो रंजीम को आप कितने दिनों से सुनते हैं?
0: काफी साल हो गया है, बोले तो 5 साल हो गया है सुनते सुनते।
1: अच्छा,
0: हाँ, खाली कॉल के माध्यम से मैं जुड़ता हूँ बस।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, बाकी सब तब कार्यक्रम सुनते हैं। हाँ, मोबाइल के द्वारा सुनते हैं।
1: जी जी, चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
0: ठीक है, थैंक यू मैडम।
1: वेलकम।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
11: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
11: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
11: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
12: Now pick it up,
13: hello.
12: Now pick your phone up,
13: hello.
12: Pick it up,
13: hello.
12: Now pick your phone up,
13: hello.
14: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो 90.4 FM में।
13: मनोरमा मैम?
16: नहीं,
13: भारती मैम।
16: हाँ
13: नमस्ते।
16: नमस्ते,
13: क्या हाल है? आज रवड़े ड्यूटी पे?
16: हाँ।
13: हम धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। बहुत बार ट्राई कर ना लगा, एक बार लड़को कल तक ना उठा।
16: अच्छा, अब उन्हें बताया रिकॉर्ड करते रहे
13: उन्हें कल बहुत परेशान हो गए 12:30 तक उनको लड़को कही उठल ना असर नहीं।
16: और सब बढ़िया बा?
13: अच्छा ठीक बा। बारिश वरिश होता
16: ना? बारिश नहीं चल रहा अभी।
13: ना चली क्या?
16: चली,
13: लेट चली
16: ना, एकदम टाइम से चली आज।
13: अच्छा, रिकॉर्डिंग फिर से पूरा हो जाएगी?
16: रिकॉर्डिंग पूरा हम 12 बजे तक करें।
13: रिपीट चलत रहे कई दिन पूरा ना, कालो चलत रहे गाना।
16: और गाना कौन सा सुने बनेगा
13: आज? आज गाना ना दिन होगा दीपक बिल्ला के, कौन सा टावर पर चढ़े वाला गाना।
16: अच्छा, जो टावर वाला सॉन्ग है वही?
13: हाँ, टावर वाला सॉन्ग हमें याद नहीं है गाना भी, हमें दिमाग और नहीं हो कैसे, खाली टावर वाला याद रहा।
16: गाना डेडिकेट भी
13: बाउड़ा के रही, मनोरमा मैम के रही, सोनी मैम के रही। चलो ठीक है, सब गाना सुना दो।
16: ओके, फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनाते रहिए रेडियो।
13: चलो सुना दो, इंतजार।

0: हेलो, सलाम, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैम, कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हाँ जी माँ, लगता है आज भारतीय है क्या?
1: लग तो रहा है।
0: हाँ वही तो, आवाज चेंज है, दो दिन से नहीं सप्ताह हो गया आपको, एक सप्ताह इसरो में आए हुए।
1: जी जी,
0: आपका इंतजार था बहुत पहले से इसरो में।
1: अच्छा,
0: इसलिए एडवांस में धन्यवाद बोलते हैं इसरो में आपको आने के लिए। मैम आज तो एक घंटा हम कोशिश किए तब जेट लास्ट में लगा है।
1: अच्छा, एक घंटे से लगा रहे हैं आप?
0: जी मैम, आज तो पता नहीं क्या हो गया था, लग ही नहीं रहा था।
1: नहीं, लगातार कॉल आते हैं ना तब तक नहीं लगता है।
0: मैम तो इतना पीछे कभी नहीं जाते हैं, फर्स्ट बार मतलब जब से रेडियो में जुड़ते हैं तब से फर्स्ट बार इतना लेट लगा है।
1: अब कॉल रहेगा तो कॉल वेटिंग में जाएगा ना?
0: नहीं, ये भी हो सकता है कि मतलब आप ज्यादा दिन पे आई हैं इसको में तो बहुत लोग पूछ रहे होंगे, इसलिए लंबा हो जाए। मैम तो गाना फरमाइश करने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे, यही
1: बता दीजिए,
0: पूछना चाहेंगे यही मतलब ज्यादा लेट लगा है तो आज नहीं बजेगा?
1: देखना पड़ेगा कि अब देखिए, आज नहीं तो कल बज ही जाएगा। लेकिन
0: अच्छा मैम, जो जुम्मा को बजता है मतलब आज शुक्रवार को, वो वाला तो मतलब रिपीट नहीं चलता है?
1: नहीं,
0: क्योंकि हम कभी कभी शाम को नहीं सुन पाते हैं तो रिपीट में मतलब सुनते हैं। तो मतलब मैम गाना का फरमाइश आज यही है, गाना का नाम है बेवफा प्यार की राहों में।
1: अच्छा जी,
0: सुनी होंगी, बहुत ही अच्छा गाना है।
1: सुने हैं
0: जी, उदित नारायण और अलका याग्निक का आवाज है, वही वाला सुनना था।
1: बिल्कुल, और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
0: डेडिकेट रहेगा आपको और मरुमा मैम को और सभी सुनने वालों को जितने भी 90s के फैन है। मैम रेडियो में हम मतलब रेडियो जो है ना, बहुत पहले से हम मतलब हमारा सपना एक था कि रेडियो में हम रेडियो का आवाज बने, लेकिन बन नहीं पाए कुछ कारण से, इसलिए जुड़ के अपना गाना सुन के ही एंजॉय करते हैं, क्या कर सकते हैं।
1: चलिए कोई बात नहीं,
0: तो मैम सुनते तो हम डेली कोई भी शो मिस नहीं करते हैं।
1: अच्छा जी,
0: रेडियो से हमको बहुत ज्यादा लगाव है ना मैम।
1: रेडियो सुनना अच्छा लगता है, ये बात अच्छा लगा सुन के।
0: हाँ, और एक सप्ताह से आप आई हैं तो और भी आज अच्छा लगेगा सुनने में शो को।
1: अच्छा,
0: और योर वॉइस योर चॉइस में मेरा मैसेज ही शामिल नहीं करती है, लगता है आप भूल जाती है शो में हमको।
1: नहीं नहीं, शो में किसी को भूलते नहीं है, सबका मैसेज शामिल करते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है।
0: देखिए मैम, 3 दिन से मैसेज कर रहे थे पिछले हफ्ते में, आप लास्ट वाले दिन मतलब बजाई थी और बोल रहे थे।
1: कोई बात नहीं, हो जाता है।
0: आज तो चलेगा?
1: हाँ हाँ चलेगा,
0: आप आइएगा।
1: आप वैसे ठीक है फिर?
0: धन्यवाद मैम।
1: ओके, रेडियो रिमझिम के इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AMZ पर।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4।

0: अच्छा जी, मगर आपका नाम भूल गया था मैं। अभी श्रुति मैम के, दिव्या मैम के, सब कोई का नाम अभी याद आता है हमको।
1: अच्छा
0: जी, चलिए मैम है क्या रहा है।
1: हाँ हाँ,
0: चलिए कब तक सुना दूंगे?
1: शाम को 5 से 7 के बीच में जो चलता है उसी में।
0: वो तो पता है, क्या पता कहीं चलाएगा नंबर
1: आज चलेगा, नहीं तो कल चलेगा जरूर।
0: अभी तो पहले कर्रा से लगाता था, अभी अभी मैं जयपुर में हूँ, पहले चला रहता था तो वहाँ से फोन लगाता था, वहाँ से बात कर चुका हूँ। अभी दिल्ली आया हूँ, जयपुर में, राजस्थान है, यहीं से अभी फोन लगा रहे हैं।
1: जी जी,
0: आज फोन लगाने के लिए छुट्टी मार दिया हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादा दिन हो गया था, कम से कम 2-3 महीने हो गया मेरे को फोन लगा कर बात किए हुए, तो आज छुट्टी मार दिया मेरा। आपका 2300 रुपया, 2350 रुपया मेरा गया।
1: नहीं, छुट्टी नहीं लिया जाता है, उसी में कॉल कभी कर लीजिएगा, हो जाएगा।
0: टाइम नहीं मिलता है, सुबह 8:30 से 8:30 बीतती है, 7:30 बजे होते हैं, 8:30 बजे रात को।
1: अच्छा,
0: इसीलिए तो काम नहीं मिलता है। संडे के दिन छुट्टी रहता है, तो संडे के दिन तो चालू नहीं रहता है।
1: नहीं,
0: संडे के दिन तो क्या बोलते हो, जो सवाल है वो करते हैं, तो वही टाइम नहीं मिलता है। मेरा 2500 रुपया आज गया, वो भी छुट्टी मार। मैं सोचा की आज बात करूंगे मेरे साथ, 2500 रुपया चला गया, कोई बात नहीं। मगर अपने गोपाल बोलते वहाँ फोन करिए, बात कर लिया, गाना मांगूंगी।
1: जी, चलिए कोई बात नहीं, फिर गाना
0: ठीक है।
1: हाँ, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 104.4 FM।
0: ठीक।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जिम 90.4 FM में।
1: वेलकम। नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: हम अरविंद कुमार बात कर रहे हैं, त्रिवेणी सुपौल बिहार से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, अपना सुनाइए।
0: हम सब भी अच्छे हैं।
1: मौसम मौसम उधर का कैसे है?
0: अभी तो मौसम हल्की गर्मी भी है, हल्का धूप था, अभी तो नहीं है, धूप आ रहा है, जा रहा है।
1: मैडम मेरे तरफ तो काफी बारिश हो रहा है घंटे से।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया है, बारिश हो रहा है तो।
1: मैडम एक सॉन्ग का फरमाइश है आज मेरा,
0: बता दीजिए।
1: सारी राज यादव का भोजपुरी सॉन्ग है, ड्राइवर हो बोलबम सॉन्ग है, लेकर दीजिएगा और डेडिकेट रहेगा जितने लाइव अभी तो हमारे सुन रहे हैं सभी को, खास करके आपके लिए।
0: ओके जी, चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: धन्यवाद।
0: वेलकम।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6575।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो।
11: हेलो मैडम
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
11: FM। स्वागत है रेडियो रिमझिम में। देखिए वही हम गोपालगंज से भी सुन रहे हैं। हेलो मैडम, आप सोनी है?
10: नहीं भारती बोल रही हूँ।
11: सोनी कहाँ से बोल रही है आजकल?
10: ये तो मैं नहीं बता सकती, ये मुझे नहीं मालूम है, ये हमारी मैनेजमेंट बताएगी आप।
11: शादी नहीं है
10: जी।
11: मेरा गाना फिर मासी नए रहे, करीब 15-20 भी गाना दिए हुए तो उन्हें बजता
10: है। गाना नहीं बजता है?
11: कहाँ बज रहा है, जैसे 6 महीने से हम चला रहे हैं गाना, तो कहाँ आ रहा है तो गाना मेरा?
10: 6 महीने से नहीं आ रहा है।
11: नहीं बीच में एक दो बेरी आया था, इसके बाद कहाँ आ रहा है? झारखण्ड से बोल रहे हैं।
10: बजे सुनते हैं?
11: अरे हमारा 24 घंटा चार्ज में रहता है गोपाली रेडियो।
10: तो नहीं नहीं ये तो ना 5-7 के बीच में चलता है, उस समय सुनिएगा, क्योंकि उस समय इस शो में जितना कॉल होता है सब बजता है।
11: हम रेडियो बजा रहे हैं, रेडियो।
10: हाँ हाँ रेडियो का ही बात कर रहे हैं। तो ये जो अभी आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये 5 बजे से 7 बजे के बीच बजेगा।
11: अच्छा तो हम कोडरमा से बोल रहे हैं, झारखंड कोडरमा। झारखंड कोडरमा सतगावा, ग्राम अम्माबाद पुटेली से बोल रहे हैं
10: जी।
11: मेरा नाम हुआ रविकांत कुमार, मेरा फरमाती है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
10: मूवी है ना ये, गाना इसमें का कौन सा सुनना है?
11: गाना भाई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
10: और गाना भी है
11: यही, इसी में ही गाना है।
10: ओके रेडियो रिमझिम में कॉल किए।

0: हेलो,
1: सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: 11 बजे से मेहनत कर रहे हैं लोग।
0: अच्छा,
1: हाँ, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की है।
0: कौनो बात ना,
1: सही समाचार?
0: ठीक है, आप बताइए।
1: हाँ, भी ठीक है, करीब करीब ठीक है, हुआ है, हवा चल रहा है, ठीक हो गए।
0: हाँ, गाना बता दें कौन सा?
1: गाना हमको ये फूल तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद है। एक बंजारा अंजारा आए, जीवन के गीत सुनाए। हाँ, इसी को
0: गाना सुनाए तो वह क्योंकि
1: हाँ, पहले आप सुनिए, बाद में पूरा रिम झिम के तब सुनने वाले स्रोत है सब लोग।
0: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करता नहीं, सुनते रहे रेडियो रिम झिम 90.4।
1: हाँ, कब सुने रहे हो
0: गाना? आज ना तो कल बाद में।
1: काला ठीक
0: ठीक।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
7: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो,
10: हेलो,
9: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। नमस्कार,
10: मनीष राजा बोल रहे हैं।
9: जी जी, कैसे हैं आप?
10: ठीक है, अपना बताइए।
9: हम भी ठीक है।
10: और
9: कुछ नहीं, बस आप सभी से बातें हो रही
10: है। गाना सुनना है, सुना दीजिए।
9: कौन सा गाना?
10: बोलबम का गाना सुनना है।
9: और गाने के बोल?
10: बोलबम के कोई भी गाना सुना दीजिए, खेसारी लाल यादव का पुराना गाना।
9: और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
10: सबसे पहले आपको पूरा रेडियो सुनने वाले।
9: जी जी, और सब ठीक है?
10: और सब ठीक
9: जी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
1: हेलो
0: हाँ बोलिए।
1: हेलो,
0: हाँ नाम बता दीजिएगा अपना।
1: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ मैं, देवभूमि उत्तराखंड से।
0: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, जकास है, बिंदास है, मस्त है।
0: अच्छा।
1: बारिश बारिश हो रहा है। बारिश तो सुबह से हो रहा है, बारिश तो अक्सर हो ही जा रहा है अभी।
0: हाँ, उधर तो ज्यादा होता ही है शायद बारिश।
1: बहुत बारिश होता है, बहुत लगातार बारिश हो रहा है बहुत दिनों से। कल थोड़ा सा राहत मिला था।
0: अच्छा जी, और सब बताइए, और सब हाल चाल?
1: बहुत बढ़िया है। हमने कहा आज लगाता हूँ फोन आप लोगों से बतियाने के लिए।
0: कभी कभी बात हो जाना चाहिए।
1: समय की टाइम है नहीं मिल पाता ना आप लोगों को। टाइम 11 बजे 12 बजे के बीच में है, और अब उसमें हमारा हमारा काम रहता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इस चक्कर से हमें जल्दी काम निपटाना पड़ता है। अभी बस काम निपटा लिया हूँ तो हमने कहा टाइम है 10 मिनट, देखता हूँ क्या पता बात हो जाए।
0: तो कॉल 12:30 बजे तक चलता है।
1: अच्छा, 12:30 बजे चलता है, ठीक हो गया। अब तो मेरे पास भरपूर टाइम है, आधे घंटे में तो कर लूंगा मैं। हमें इतना पता था कि 11 से 12 होता है, इसलिए मेरे दिमाग में 12 बजे तक ही था।
0: 11 से 12:30 बजे तक होता है।
1: ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो हमारे चलिए ठीक हो गया, ठीक हो गया।
0: बता दीजिए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: गाना चुनरी चुनरी करके आता होगा ना? वही वाला।
0: और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
1: हाँ, कामरान भाई को, उत्तम सोनी को, और सगीर आलम, परजू भाई, और जितने भी सुनने वाले हैं, आप भी हैं, सोनी जी हैं, सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी बिल्कुल। तो फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन।
1: ठीक है, ओके, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
2: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03। 62042434-03।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी,
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
5: 90.4।
4: हाँ हाँ, हम ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: हम तो ठीक हैं
4: जी। नाश्ता हो गया है आपका?
5: हाँ हाँ मैम, नाश्ता हो गया, दुकान पे है।
4: अच्छा जी, तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
5: गाजन का घर, सावन आए बादल आए बुलबुल चलते फूल खिलाए, यही गाना सुनना।
4: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
5: अजय प्रजापति है, लुकमान भाई है और कुलदीप भाई है, अमित भाई है और रवि, हमारे रवि शर्मा जी हैं।
4: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते हैं रेडियो।
5: हम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के बोल रहे हैं
4: जी।
5: अयोध्या डिस्ट्रिक्ट,
4: नाम आपका बता दीजिए।
5: सूर्य प्रजापति
4: जी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू और आपको नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और सावन महीने की दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ सभी लिसनर्स लोगों को भी।
0: जी,
1: रेडियो रिंगिम परिवार सब ठीक है?
0: सबको ठीक है। आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, महादेव की कृपा है। आरजे सोनी जी कहाँ है आजकल? तो उनका शो भी नहीं आ रहा है, आप आ रहे हैं उसमें या फिर उनके शो पे आपका कब्जा हो गया है लग रहा है?
0: नहीं, ऐसा नहीं। अब सर जिसको बोल देते हैं वही काम वही करना होता है हम लोगों को।
1: जी, ये जुड़ रहे हैं प्रोग्राम में, मेरा मैसेज शामिल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों।
0: नहीं तो सबका मैसेज शामिल करती हूँ।
1: तो आज तो सोचे हैं कि आज मैसेज नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट कॉल ही करेंगे। और उसमें जानती हैं, उसने कॉलिंग का ही प्रोग्राम उसको कर दिया जाए ना तो वो अच्छा नहीं लगे, मैसेज अच्छा लगता है।
0: हाँ, मैसेज सबकी बातें शामिल करना होता है तो अच्छा लगता है, कौन क्या बोला है क्या नहीं बोला है उसको पता चल।
1: और उसमें क्या होता है कि आप लोगों को थोड़ा टाइम भी मिलता है और लगातार कॉलिंग हो तो ये तो ठीक है। गाना आज सोमवार का ही कोई सुना दीजिए, पवन सिंह का गाना सुना दीजिए, एक बहुत वाले गाना आया था कि हमर जान भूखलवाड़ी, ऐसा ही था, सोमवार का ही गाना वही वाला सुना दीजिए।
0: गाना सुनाना भी चाहेंगे किसी को?
1: सभी लोगों को और खासकर कुंवारे लोगों को।
0: अच्छा जी, ठीक, चलिए ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करे 85070-32042 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: मैं बनूंगा,
11: मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
9: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
12: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
13: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
14: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
13: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
15: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
16: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. The phone ding ding bajte hai to kehte
17: hai hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो, हेलो
19: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
18: नमस्ते दीदी।
19: नमस्ते,
18: गाना सुने का
19: जी? नाम बता दिया आप।
18: रामकेश।
19: और कौन सा गाना सुनेगा?
18: खेसारी लाल के बंधन फिल्म का गाना। नहीं कहे
19: कौन सा?
18: खेसारी लाल के बंधन फिल्म का गाना।
19: अच्छा, मतलब तो बहुत सारा गाना बा, मैं कौन सा गाना?
18: कौन बजा दे गाना? बस याद नहीं क्या, कौन सुना दे जाना? अच्छा
19: अच्छा जी, गाना सुनाओगे बा? क्यों के गाना मतलब क्यों के सुनाओगे बा?
18: सब लोग
19: जी जी, चले फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे रेडियो रंजन 94 FM।

0: रेडियो रिमझिम
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ, गोपालगंज वार्ड नंबर 2 से।
1: जी, कैसे हैं आप?
0: जी, बिल्कुल सही है। गाना हमको सुना दीजिए।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
0: ये नाम फिल्म का गाना है, ये अपना CI है, CI है, ये ही गाना सुना दीजिए।
1: और गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: बस आप अभी परिवार को रेडियो रिमझिम का श्रोता गण है। गाना सुनाएंगे?
1: ये आपको शो चलता है शाम को 5 से 7 बजे और सुबह में रिपीट होता है 9 से 11। जी जी,
0: बहुत ही है, बहुत मेरी की बात है कि कॉल लग गया, नहीं तो 2-3 बार ट्राई किया, लगा ही नहीं
1: है। जी, कभी कभी नहीं लगता, बिजी रहता है ना इसीलिए। ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं।

0: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: जी हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
8: जी जी धन्यवाद मैडम।
9: हेलो
8: जी। हाँ मैडम नमस्ते।
9: नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
8: मैडम मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा हूँ, गांव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से।
9: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
8: बस मैडम बहुत बढ़िया है हम तो, आप बताइए आप कैसे हैं?
9: हम सब भी अच्छे हैं।
8: जी जी, और मौसम कैसे है मैडम आपकी तरफ?
9: मौसम तो अभी ठीक है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा मतलब ठंडा, एकदम नॉर्मल है।
8: जी जी बिल्कुल, इसी तरह का मौसम तो अच्छा लगता है मैडम।
9: और बताइए, और सब ठीक है आपके यहाँ?
8: हाँ मैडम, अपने यहाँ सभी लोग बढ़िया हैं। और अपने यहाँ क्या है कि अभी लगातार बारिश हो रही थी 3-4 दिनों से, और कल और आज 2 दिन अभी पानी रुकी हुई है।
9: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
8: मैडम फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु, और गीत के बोल हैं झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
9: जी जी, गाना किसी को सुनाएंगे भी?
8: जी मैडम, अपने रेडियो मित्र है सरगुजा रेडियो, सभी साथी रहेंगे इस गाने में शामिल, और साथ ही रेडियो मित्र।
9: जी जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रुमझुम 91.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो भारती जी।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
1: अच्छा, मैं तो आपका रेगुलर श्रोता हूँ, लिसनर। तो मैं बेंगल से गोपाल बोल रहा हूँ, आप तो जानते हैं मैं व्हाट्सएप अधिकारी हूँ। तो आपके साथ आज पहली बार बात हो रहा है। आज कहीं से तो बात मेरा बहुत पहले से भी हो गया, जान पहचान से भी हो गया। तो मैं बेंगल से बोल रहा हूँ, मेरा गाँव तो है, आपके सिलीगुड़ी नाम सुने हैं?
0: जी जी।
1: सिलीगुड़ी से आगे इधर जो विधाननगर पहुंचा, पाइनएप्पल से यहाँ पर फेमस है ना, मैं वहाँ पर रहती हूँ। कैसे है, बोलिए।
0: हम सब ठीक है, आप बताइए, आप सब कैसे हैं?
1: हम भी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपसे बात करने के लिए मैं इसलिए कह रहे थे, भारती जी से बात तो नहीं हुए है। देखिए आज कॉल भी मेरा लाइन भी मैं आ गया हूँ, तो गाला भी तो रिक्वेस्ट मैं कह सकती हूँ, लेकिन आपका वो प्रोग्राम जो बहुत अच्छी तरह चल रहा है ना, यहाँ पर बेंगल में नहीं सुनते, लेकिन बेंगल मेरा मैं जो सुनते हूँ ना, मेरा साथ बहुत दोस्त मेरा सुनते हैं, उसे बोलते हैं बार हिंदी में बड़ी बार, तो हम वो जो सब मोबाइल ऐप में सुनते हैं ना, मैं भी तो मोबाइल ऐप से सुनते हूँ, रेडियो भी है, बस रेडियो में ना क्लियर नहीं आ रहा है, 94.0 जो ये है ना, क्लियर नहीं।
0: लेकिन ऐप के जो द्वारा सुनते हैं उसमें तो क्लियर आता है।
1: हाँ, वो तो क्लियर आते हैं, वो तो नेट के तरह चल रहा है ना, नेट रहेगा तो होगा नहीं होगा, मेरा घर में तो वाईफाई लगा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो मैं अभी दुकान से बैठ के मेरा गाना सुन रहा हूँ, लेके इसलिए फोन किया।
0: अच्छा जी, तो बता दीजिए गाने की फरमाइश।
1: गाने का फरमाइश है, अमिताभ बच्चन का एक तो मूवी है ना कालिया, कालिया मूवी का जो जहाँ भी तेरी नजर है मेरी नजर, मूवी का गाना तो सुना दीजिएगा किशन कुमार की आवाज में।
0: जी जी।
1: बहुत बढ़िया फिल्म है वो, एक टाइम में बहुत फेमस हुआ था, हम लोग तो पुराना फिल्म देखे है ना। और ये प्रोग्राम तो आपको तो 5 बजे से चलेगा ना।
0: हाँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये मेरा तो गाना तो सभी करते हो आप परिवार को, आप भी एक दिन मेरा गाँव आए ना, विधाननगर सिलीगुड़ी में आए ना,
0: नंबर
1: तो है चला है। आप ये स्टडी करते है क्या, पढ़ना करते है?
0: जी स्टडी भी है, स्टडी।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे है।
0: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
1: ओके ओके, थैंक्स,
0: वेलकम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:30 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और लेट हो गए हैं आप सभी के बीच लेकिन कार्यक्रम को स्टार्ट कर दिए हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-16-65-96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो आप लोगों को पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप नए गाने की फरमाइश करें और आपकी फरमाइश हम ना प्ले कर पाएं और आप इंतज़ार करते रह जाएं, क्योंकि कार्यक्रम स्पेशली पुराने गाने के लिए ही यह बना हुआ है। ये बातें हर रोज़ आप सभी से निवेदन पूर्वक की जाती है और कई श्रोतागण हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ा सा समझने की प्रयास करें और पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो रेडियो रिमझिम, नमस्कार सोनू भाई, सभी दोस्तों को नमस्कार बोलिएगा। मैं राजेश प्रसाद सूरत से आपको सुन रहा हूँ और आज मुझे भी एक गाना सुनना है। गाने का बोल है, रेशमी झुलफे ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। ये गाना सबसे पहले आपको और सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को और मैडम जी के साथ सुनना चाहता हूँ। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और काफ़ी प्यारा गाना है और ये गाने सुनने के बाद से बहुत दिल खुश हो जाता है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सोनू सर जी, कैसे हैं आप? अनूप यादव जी तो बिल्कुल बढ़िया हैं। अनूप यादव जी आप भी बन रहे हैं हमारे साथ और आप बताएं कि आप कैसे हैं। फिलहाल आगे भी गाने के फरमाइशों वाला मैसेज सेंड करें ताकि समय रहते हुए आपकी फरमाइश हम सुना सकें। आगे अभी तो दो ही मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो चलिए मैसेज पहुँचेंगे तो शामिल करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं गाने के साथ। गाने का बोल काफी प्यारा पहुंचा हुआ है, ये शरबती आंखें।

रेडियो रेमझिम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करेंगे और आगे कुछ गाने की भी फरमाइश है, तो अगले गाने भी हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार यानी सलाम बोलिएगा, और सावन की दूसरी सोमवारी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आप सभी को। मुझे आज सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग का बोल है हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ डेडिकेट। तो बिल्कुल जब गाने हम प्ले करेंगे तो आपके सारे मैसेज शामिल करेंगे, और यहाँ पे आगे मैसेज करती हैं वाओ काफ़ी प्यारा सॉन्ग, बिल्कुल इन्हें ही देखकर जी रहे हैं सभी, और इस मैसेज को करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि नींद आई है तेरी यादों के, नींद आई है तेरी यादों के साथ नींद भी रूठी है तेरे बिना, आज दिल बस यही पूछता है हर पल मिलने कब आओगे मेरे, बस हर पल मिलने कब आओगे मेरे पास। हेलो हाय, क्या हाल है? सुनो भैया गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से, और मुझे गाना सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि मेरा एक वीक 3 दिन हो गया है, और सुनो भैया अनूप यादव, तो बिल्कुल यदि आपकी फरमाइश पहुँचती है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। हम तो पहले ही बोल चुके हैं आपसे कि यदि आप फरमाइश करते हैं तो पूरा करेंगे समय रहते। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा, हेलो सर मैं भी आ चुकी हूँ आपके शो में और मुझे भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करती हैं निशा पांडे, बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और चलिए मैसेज पहुँचाने के बाद फिर डिलीट भी कर दिए, तो यदि मैसेज पहुंचता है तो शामिल करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे, और अगले गाने के फरमाइश हमारे सुरदागण जी अरशद जी हैं, और डेडिकेट है नशीमा सरीना जरीना, इन सभी के साथ सुनना चाहते हैं। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और गाने का बोल देते हैं अखियों के झड़ोखों से। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 94.4 एफएम पे।

काफी प्यारे गाने सुन रहे हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 94 एफएम पे। शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और कौन से गाने सुनने हैं, गाने का नाम और कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, उस स्थान का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 7277-1665 पे। और बशर्ते आप लोगों को ध्यान देना है कि पुराने गाने की फरमाइश पूरी की जाती है तो पुराने गाने की फरमाइश ही करेंगे। जैसे कि आप सभी अभी सुन रहे हैं दो गाने, और तीसरे गाने भी ओल्ड इज गोल्ड, रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में प्ले होगी। यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ तो मैसेज को शामिल करते हैं। और आगे लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि नाइस सॉन्ग, बिल्कुल काफ़ी प्यारे सॉन्ग। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर प्रणाम, मुझे चल रे कंवरिया शिव के धाम गाना सुना दीजिए, मेघनाथ माझी जी। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि गाने का बोल परदेसी, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, अनूप यादव जी मैसेज करते हैं। चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो भैया, गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? तो बिल्कुल बढ़िया, आप सभी के बीच उपस्थित हैं। और मैसेज करते हैं सजदा मीरगंज से। और आगे बढ़ते हैं, अगली गाने के फरमाइश प्ले करते हैं रोशनी की। और इनके तरफ से ही गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं। कुछ से डेडिकेटेड नाम में भी है तो उसको भी शामिल कर दें। और लिखा गया है कि डेडिकेट आपको एंड मेरी सिस्टर हैं सब, प्रियांशी, पूजा, कुछ से रेडियो दोस्त हैं, रानी, रजनी, संतरा कुशवाहा, सविता चौहान, असद चौहान, निशा सिंह, निशा भारती, सबीना पी, शिल्पी सिस्टर, इरफान भैया, कमरान भैया, अर्केश भैया, गुलाम भैया, समीर भैया, दिलीप भैया, वीरेंद्र भैया, लवली भाभी एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
5: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।
9: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो MGM 94.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को देखा जाए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि दिल से थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो MGM सुनने के लिए, रोशनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि भैया मुझे भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे साजिदा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, मैसेज करने वाले रुखसार जादूपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि जब आपके एक दूसरे के बिन दिल या रहा नहीं जाता, तो हमेशा के लिए एक हो जाए भाई, पर सोनू बाबू हम भी जुड़े हैं, जगह हो तो हमें भी एक सॉन्ग सुना देंगे। वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर अक्सल नेपाल बॉर्डर से मैसेज किए हो, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और देखे तो समय तो बहुत कम ही है, मैसेज कर दीजिए गाने के फरमाइशों वाला, यदि समय मिलेगा तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे, और इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं अनूप यादव जी, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। तो चलिए इनके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

और इशू चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मिसेज पहुँचा हुआ है, और मिसेज पहुँचाने वाले गुलाम हुसैन वेस्टे मुंबई से, और गाने का बोल देते हैं उठा ले जाऊँगा तुझे मैं डोली में, और इस गाने को डेडिकेट करते हैं मासूम कैसर, जुनेद, कमरान भाई, नौसाद, फरहान और जगदीप, आयुष, प्रिंस, लक्की, शमीर, शाकिब, रुबीना, ब्यूटी, हिना, गुड़िया, सजदा, गुलशन, शबीना, यास्मीन, सलेहा, रोशनी, आफरीन और आप हमें भी। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, और यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचा देखा जाए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर जी गाना बजाने के लिए। अनूप यादव जी मैसेज करते हैं, चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए, और यदि समय से मैसेज पहुंचेगा, मेरे पास समय रहेगा तो ऐसा नहीं है कि हम किसी की गाने ना सुनाएं, सबकी गाने सुनाने की कोशिश रहता है मेरा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सुनो भैया नमस्ते, एमडी नौसाद दरभंगा भाजीतपुर से, और आज का तो सभी सॉन्ग लाजवाब सुनाए हैं, बस इसी तरह सुनाते रहिए रेडियो रमझम सुनने वाले सभी श्रोताओं को थैंक्स। मैसेज करते हैं नौसाद जी, तो आप बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया कि वेरी नाइस सॉन्ग, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बट परदेसी परदेश जाना भी मजबूरी है। मैसेज करती हैं रोशनी, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि मुझे भी गाना सुनना है, तो गाने सुनने हैं तो आज तो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि काफ़ी समय निकल गए हैं और बहुत कम समय मेरे पास बचे हुए हैं, कल कोशिश रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं, और गाने सुनते हैं गुलाम हुसैन की पसंद, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएगी सखिया बेचारी।

बिल्कुल उठा कर ले जाइए, लेकिन हम लोग को भी बताइएगा क्योंकि हम लोग को भोज खाना है। गुलाम हुसैन कब लेकर जा रहे हैं? और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सनविया गुड नाइट। सजदा अंसारी मैसेज करती हैं और कहते हैं कि मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। तो चलिए आपकी भी सॉन्ग सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मेघनाथ माझी जी करते हैं, सर मेरा गाना नहीं बजेगा क्या? तो कई गाने आज नहीं बज पाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा, काफ़ी प्यारा सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी और कहते हैं कि थैंक्स मुझे सॉन्ग सुनाने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सुपर ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक्स सनविया। बिल्कुल सुपर सॉन्ग तो है, लेकिन आप जवाब दें कि हम लोग को बुलाएंगे कि नहीं, क्योंकि लगन आप लोगों का चालू हो गया है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सनम बाबू, जब दोनों की राय विचार ज़बरदस्त है तो ज़बरदस्त से ढोली में उठकर ले जा। लिखते हैं कि ज़बरदस्ती से ढोली में उठा कर ले जाने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल। और मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया और आगे मैसेज पहुंचते जा रहे हैं। मैसेज पहुंचा सनो भाई गुड नाइट। अनूप यादव जी मैसेज करते हैं, अभी रोकना है, अभी एक दो गाने और सुना जाएगा क्योंकि कार्यक्रम लेट से स्टार्ट हुआ है, तो दो गाने सुनाने का विचार बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो रेमछिम 9.4 एफएम पे सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे हमारे श्रोतागण जुड़े हैं ब्रिज बिहारी पांडे जी राजेंद्र नगर गोपालगंज से, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि लुप छिप बदरम में चमके जैसे चंदवा, काफ़ी पुराना गाना फरमाए हुए हैं तो इन्हीं के गाने हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे कुछ मैसेज है तो मैसेज देख ले। और लिखा गया है कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया सॉन्ग सुनाने के लिए, साजिदा मैसेज करते हैं। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेमछिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है रोशनी की तरफ से, बिल्कुल काफ़ी प्यारा सॉन्ग। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग तो आज तो नहीं हो पा रहा है, कल कोशिश रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समय बहुत कम है मेरे पास। और आगे हम पांडे जी की फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं, और आप सब बने रहें, अभी एक दो और गाने सुना जाएगा रेडियो रेमछिम 9.4 एफएम पे।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86 164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-92। जी हाँ, 9852-78-8291। और कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। जी हाँ, 7277-16-65-96। तो बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आप सभी के लिए जब तक हमारे श्रोतागण हमसे जुड़ रहे हैं तब तक एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले कर रही हूँ। और गाने के बोल हैं, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी आप लोगों ने सुना हमारी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग और गाने के बोल थे, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँच चुके हैं, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, मनीष रजाक फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और लिख रहे हैं कि चाहा है तुम्हें अपने अरमान से भी ज़्यादा, लगती हो हसीन तुम मुस्कान से भी ज़्यादा, मेरी हर धड़कन हर सांस में तुम्हारे लिए क्या मांगे जान मेरी जान से भी ज़्यादा। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं मनीष रजाक जी, और इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम में फरमाइश भेज दिया हूँ, बजा दीजिएगा और मैडम जी पूरा गाना सुनाइएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ शमशेर मुंबई से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं लिख रहे हैं जी मैम नमस्ते गुड आफ्टरनून, और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है आपका, चॉइस लाजवाब है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तम सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, हम सुनील कुमार पश्चिमी चंपारण अरेराज बाबा की नगरी से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल पहुँची हुई है और मूवी है जंगल लव, और गाने के बोल हैं हम तो थे अजनबी। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश है, तो गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: हाँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सभी की दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं बादलपुर दिल्ली से और नूर आलम, मुझे भी एक गाना सुना है, सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ दीनानाथ यादव कुवैत से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार प्रणाम बा भारती मैडम जी, हाँ हमरो हाजिरी लगा दें और हमू जुड़ गलवानी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, हेलो भारती दी, गुड आफ्टरनून, का हलवा, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, सावन की बारिश में तेरी खुशबू घुल सी जाती है, भीगता जिस्म कम है, मेरी रूह ज़्यादा मचल जाती है। नमस्ते नमस्कार डियर भारती जी, कैसी हैं? मैं तो हमेशा मस्त बिंदास और हर पल झकास रहता हूँ। और आज मुझे सॉन्ग सुनना है, सुना दीजिएगा। और गाने की लिंक पहुँच हुई है और सुनवाना चाहता हूँ, निशा भारती, उज्जवलिया, रुखसार खातून, आयशा खातून, शगुफ्ता फिरदौस, शिल्पी सुधा भारती, हजरा खातून, अनिल भाई और थोड़ा बहुत आपको भी भारती जी। और मैं रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम शारजहाँ सिटी UAE दुबई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि मेरा दिल मेरे दिल की हसरत की आवाज़ हो तुम, मेरी गज़लों और शायरी की नाम हो तुम, जिसको रेडियो पर महसूस करें जो खुशी मुझे मिलती है, मेरे ख्वाबों ख्यालों की आखिरी पैगाम हो तुम। और लिख रहे हैं कि बहुत ही लाजवाब सॉन्ग से शो की प्रस्तुति, भारती जी सुनकर मस्त मन मस्त हो गया मेरा। इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ जो हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि लिख रहे हैं, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, लाजवाब ओपनिंग सॉन्ग, और मैं भी जुड़ गया हूँ। भारती जी मेरा भी सॉन्ग प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। और लिख रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। और जितेंद्र कुमार बरौली से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की बोल है, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुनी बहन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो कहाँ है उन्हें बोल दीजिएगा। और जी बिल्कुल बोल देंगे। और इसी के साथ यहाँ लिख रहे हैं कि रिश्ता कैसन की जिद ना होके, जमाना के सोझा प्रसिद्ध ना होके, चढ़ जाई रउआ टावर पर महाराज, प्यार अगर रउआ सीधा ना होके। तो और बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो कि मैसेज करने वाले हैं मोहम्मद इरफान। इसी के साथ यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि रेडियो की आवाज़ कट कट के आ रही है और ऐसा है तो पता नहीं क्यों आ रही है, चेक करना पड़ेगा। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं मुन्नी खातून साहेब रुखसार और रजिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू इरफान जी गाना में शामिल करने के लिए, और मेरा भी मैं हजरा सूरत से और मस्त सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्कार, पप्पू ठाकुर बगही बाजार कटिया गोपालगंज से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मोतिहारी से एमडी मीनू मोतिहारी से जुड़े हुए हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी जी मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी जी ठीक है, आप लोग की दुआ है। मैं दरभंगा जिला से बोल रहा हूँ, अजीत कुमार राम। जी मैं इससे पहले मुंबई में टेलर का काम करता था, इस टाइम मैं अभी गाँव में काम कर रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: जी आपका प्रोग्राम मैं काफी टाइम से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अभी जो गाना बज रहा था जो तेरे सीने का जो दिल है, बहुत अच्छा गाना बजाए आप।
0: जी
1: जी
0: आप ही लोग के जैसे प्यारे, हमारे कोई प्यारे लिसनर हैं जो गाने की फरमाइश की थी।
1: जी जी
0: तो बता दीजिए आपको कौन सा गाना सुनना है।
1: मेरे को मैडम जी एक पुराना गाना सुना देते, सावन का महीना पवन करे सुर, जीरा रजूमे ऐसे जैसे मनवा नचे मोर।
0: और गाना डेडिकेट है।
1: जी जी डेडिकेट है अमरजीत जी को, बीकर मास्टर जी को, सुरेश भाई को, अतिकुल मास्टर को। जी जी सबसे पहले आपको।
0: जी तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, एंजॉय कीजिए।
1: जी मैम थैंक यू,
0: वेलकम।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो।

0: 575।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती जी, क्या हाल है। मैं साकिब जम्मू एंड कश्मीर से बिहार का रहने वाला हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, हम लोग भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, और क्या हम भी गीत का फरमाइश कर दें। और लिख रहे हैं कि उत्तम भाई का हालचाल क्या है बताइएगा, और उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चिता सिंह और रुद्रपुर से देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जय श्री राम भारती मैम, क्या हाल है। अनूप कुमार कुशवाहा ग्राम निर्जन से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम चरण स्पर्श मैडम जी, अबूधाबी से दिलीप शर्मा आप सभी से जुड़ा रहा हूँ, और लिख रहे हैं कि वो भी मुझे देखकर मुस्कुराती थी लेकिन कभी बताई नहीं अपना नाम, जय श्री राम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरी मोहब्बत है वो कोई मजबूरी तो नहीं, वो मुझे चाहे या मिल जाए ज़रूरी तो नहीं, ये कुछ कम है कि बसा है मेरी सांसों में वो, सामने हो मेरी आंखों के ज़रूरी तो नहीं। और लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव के रहने वाले हैं और गाने की फरमाइश वॉइस के माध्यम से पहुँची है, तो चलिए सुनते हैं वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
6: हाय सोनी जी और भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव थाना नासरीगंज जिला रोहतास बिहार से बोल रहा हूँ। मुझे फरमाइश है निगाह मूवी का, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। और सुनने वाले हैं हमारे सभी रोशन टेलर में हम लोग काम करते हैं, सदाम भाई, असलम भाई, नूर मोहम्मद, मीर हसन अंसारी और जितने भी लोग हैं सभी लोग सुनेंगे, और जितने रेडियो रिमझिम हैं सभी लोग के सुनवाना चाहता हूँ कार्यक्रम के ओपनिंग सुनवा दीजिएगा मैडम जी। ओके धन्यवाद।
5: तो इरशाद मास्टर जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, और गाने के बोल थे सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सावन के झूलों ने मुझको झुलाया। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और हमारे पास यहाँ अभी बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि साथ अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, प्यार अगर दिल से करोगे तो निभाएंगे जरूर, कितने भी कांटे क्यों ना हो दोस्ती की राहों में, आवाज़ अगर दिल से दोगे तो आएंगे ज़रूर। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से और लिख रहे हैं कैसी हो भारती जी। तो मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय नमस्ते मैम, कैसी हैं, मैं विमल कुमारी, मेरा एक वीक हो गया है और आज हमारी देवरानी की फरमाइश पे सॉन्ग बजा दीजिएगा। और सॉन्ग की फरमाइश पहुंची हुई है और लिख रहे हैं प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी सॉन्ग प्ले होगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैम आप मेरे मेरे गांव का नाम गलत बताई, और चलिए फिर से एक बार बता देती हूँ। और अनूप कुमार कुशवाहा निरंजना से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो हमारे पास अगली फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, मैं संदीप कुमार माधवपुर सिवान से, और मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। और गाने की फरमाइश जो कि पहुँची हुई है पवन सिंह की आवाज़ में गाना सुनना है, और लिख रहे हैं कि गाने की बोल है उठनी के छोर अपना चबावे लु दाते से। तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं और सुनते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमजम 90.4 FM में, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं इरशाद मास्टर, और लिख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी गाना सुनाने के लिए, और लिख रहे हैं कि गाना काटने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून जी, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और आप लिख रहे हैं कि आप ठीक बानी नू, हम सब ठीक बानी। और मैसेज करने वाले हैं राकेश भारती बक्सर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप सब कैसे हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि देख मेरी आंखों में ख्वाब किसके हैं, दिल में मेरे सुलगते तूफान किसके हैं, नहीं गुजरा कोई आज तक इस रास्ते से होकर, फिर ये कदमों के निशान किसके हैं। और इरशाद भाई की सुपर सॉन्ग दिलीप राम दिल्ली से। और लिख रहे हैं कि खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, हवा बनकर आपके सांसों में समा जाएंगे, और धड़कन बनकर आपके दिल में उतर जाएंगे, जरा महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, दूर रहकर भी पास नजर आएंगे। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्कार, पप्पू ठाकुर बगही बाजार कटिया गोपालगंज से, और हमारा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि प्यारा सा सॉन्ग सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब का, जिंदगी का सफ़र है या किसका सफ़र, प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। और फेवरेट सॉन्ग है इनका, और बहुत ही खूबसूरत सी गाने की फरमाइश है, जिंदगी का सफ़र। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना पप्पू ठाकुर जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग और उनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया है, जो कि लिख रहा है थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, मेरा सॉन्ग प्ले हो जाएगा क्या? और विक्रम चौहान नवादा, मसौदा से और पटना गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, जो लिख रहे हैं राधे राधे भारती जी, मैं अरविंद चौहान सिवान से, और हमारा भी सॉन्ग बजा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं मुकिंदर कुमार कुशवाहा, दुबई से और रहने वाला हूँ बंजारी से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग आपको और सभी दोस्तों को बोलिएगा, और भारती जी मेरा सॉन्ग थोड़ा जल्दी प्ले कर दीजिएगा आज, और प्लीज़। और इसी के साथ हमारे पास जो अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि कभी कभी मौका मिलता है आपके शो से जुड़ने का, और मेरे तरफ से भी हजरा खातून को सलाम बोल दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि एक बार करके एतबार लिख दो, कितना है मुझसे प्यार लिख दो, तरस रहे हैं बड़ी मुद्दत से हर रेडियो हम रेडियो पर अपनी मोहब्बत का इजहार लिख दो, दीवाने हो जाए जिसे पढ़कर के इरफान, और कुछ ऐसा तुम एक बार लिख दो। और इसी के साथ लिख रहे हैं कि भारती जी मेरा सॉन्ग समय से प्ले कर दीजिएगा, क्योंकि रात्रि 2 बजे से ड्यूटी रहती है, और क्योंकि दुबई में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो कुछ देर के बाद हम अपनी फरमाइश नहीं सुन पाएंगे, और सो काइंडली प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं इरफान जी, और इसी के साथ है चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे, और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है, जो कि गाना है दिल मिलने को तरसता है, तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
2: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97-714-86164।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नंद कुमार शर्मा सिगरौली मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और खूबसूरत सॉन्ग चल रहा है, और इसी के साथ है बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू इरफान जी गाना में शामिल करने के लिए और वेलकम इसके लिए। यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन जी की तरफ से पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आज हम अपना भतीजा से पूछ ले हैं तो आंगनबाड़ी पढ़े काहे ना गए ले हा, और लिख रहे हैं कि भतीजा बोला चाचा जी कल हमरा के तौलत रहुआ लो और का पता आज बेच दिलो। और बहुत ही मज़ेदार लाइन है, और इसी के साथ है यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं दिलीप राम जी दिल्ली से, और लिख रहे हैं कि मोहब्बत को जो निभाते हैं उनको मेरा सलाम है, और जो बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं उनको हमारा ये पैगाम है, वादा ए वफा करो तो फिर खुद को फना करो, वरना खुद के लिए किसी की ज़िंदगी ना तबाह करो। और बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी नाम बता दीजिएगा अपना।
9: कॉल नहीं रहे हैं जल्दी।
8: जी
9: कॉल नहीं दे रहे जल्दी।
8: नहीं कॉल भी लेती हूँ, अभी दिखा है तो रिसीव की हूँ।
9: खाली मैसेज लिखा है।
8: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तो बता दीजिए।
9: गाना सुना दीजिए मैम। मैं मट्टी का बूटा सुनने के लिए।
8: और गाना किसी को सुनाना भी है? जी जी, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, सुनते रहिए। वेलकम।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, मैं माटी का गुड्डा और तू सोने की चिड़िया। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि नया पारा विरई जिला वालोद से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, गुड आफ्टरनून भारती जी, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम मोहम्मद अंसारी रोशन इंटरप्राइज गाना सुनना है और गाने की बोल पहुँची हुई है और लिख रहे हैं अर्जेंट में मैडम जी गाना सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, मेरा सॉन्ग प्ले हो जाएगा क्या? और विक्रम चौहान नवादा से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैं माटी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया, तेरा मेरा प्यार हुआ तो यह बिगड़ा। लिख रहे हैं कि मैं माटी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया, तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया। सॉन्ग सुपर सॉन्ग। तो इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना भी बजा दीजिए। और लिख रहे हैं वफा का दरिया कभी रुकता नहीं, इश्क में प्रेमी कभी झुकता नहीं, खामोश है हम किसी के खुशी के लिए, ना सोचो कि हमारा दिल दुखता नहीं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है मनीष रजाक जी की तरफ से। और इसी के साथ जो हमारी अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि मैम नौशाद मोबाइल विक्रम गंज रोहतास बिहार से, और फिर एक अपना चूड़ी का दुकान 1 साल हो गया खुले हुए और ओपनिंग हो गया है, और सभी को विक्रमगंज में बता दीजिएगा कि नौशाद मोबाइल का चूड़ी का दुकान एक और खुल गया है और विक्रमगंज में। तो लिख रहे हैं कि कराकटा में विक्रमगंज पड़ता है। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि गाने की फरमाइश है पवन सिंह की आवाज़ में। और लिख रहे हैं गाने की बोल है रहलू अनजान तू तब बन गई लो जान हो। तो बहुत ही खूबसूरत की गाने की फरमाइश है। तो एंजॉय करते हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: और यहाँ नौसाद जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं, गाना बजाने के लिए धन्यवाद मैडम जी, सब लोग सुन रहे हैं और वीडियो भेजे हैं, कैसा है दुकान ये तो बता दीजिए मैम। तो बिल्कुल आपकी दुकान अभी तो नहीं देखी हूँ पर देख के ज़रूर बताती हूँ। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं का मैम जी हमारे गाना प्ले ना हुई का सॉन्ग नेम लिख रहा हूँ, गाने की बोल है जो पास बुलाती है कितना रुलाती है। और मैं आपको बता दूँ आपके गाने की फरमाइश कल है, आप कल कर सकते हैं अपने गाने की फरमाइश। और यहाँ इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती मैम, आज मेरा गाना लगा दीजिए, भेजा हुआ हूँ और प्लीज़ भारती जी बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मेरी फरमाइश पूरा कर दीजिएगा और मैम प्लीज़। तो जी आपकी फरमाइश आज प्ले होगी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो मैसेज पहुँचा हुआ है उससे पहले हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: बोल रहे, थोड़ा गाना सुनना था, भोजपुरी सॉन्ग में।
0: जी जी बिल्कुल, नाम बता दीजिए पहले।
1: नाम बोले नहीं, अपना नाम है।
0: नहीं सुनाई नहीं दिया था, अब सही सुनाई दे रहा है, बोलिए।
1: गाना बजाना है एरिया के चलल बा, एरिया के चली सॉन्ग बचपी लग पहले लग गया सॉन्ग। हेलो,
0: हाँ
1: सुनिए मैडम, क्या बोले हैं
0: जी?
1: बोल रहे के सारे सॉन्ग में गाना नहीं है एरिया के चलल बा, एरिया के चली सॉन्ग में बचपी सॉन्ग।
0: हाँ तो मैं आपको बता दूं यहाँ गाना किसी को सुनाना चाहते हैं आप?
1: जितने भी रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सब सभी को सुनाना चाहते हैं।
0: अच्छा जी, और गाना बोल रहे थे कि कास्ट से रिलेटिव सॉन्ग मैं नहीं बजा सकती।
1: दूसरा कोई बजाएगा था?
0: जी दूसरा बजा दूंगी, बता दीजिए
1: दूसरा। शेषाई दादा का सॉन्ग ऐसी बजा दीजिए तो भैया, नहीं ऐसी वाला चाहे हिंदी बजाए, छोड़िए चाहे भोजपुरी जो मना है तो हिंदी बजा दीजिए ऐसी सॉन्ग का, क्या
0: भोजपुरी सॉन्ग
1: नहीं महाराजा बजाए सॉन्ग, महाराजा फिल्म की सॉन्ग बजा दीजिए महाराजा।
0: ओके जी, आपका गाना प्ले कर रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान

0: परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
5: से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि फोन से बतियावल इजहार ना होला, जब तक आंख ना मिले तब तक प्यार ना होला, और पवन सिंह की सुपर सॉन्ग दिलीप राम दिल्ली से। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचे हुए हैं जो लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूं, और रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहां हमारे पास मैसेज पहुंचे हुए हैं जो लिख रहे हैं, हेलो मैम, मैं मुकेश कुमार छत्तीसगढ़ से, मैं भी प्रोग्राम सुन रहा हूँ, और मेरा भी मैसेज शामिल कर लीजिएगा, और अपनी आरजे नेम बता दीजिएगा। तो मेरा नाम भारती ही है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, दीपक प्रदीप चौहान कुशीनगर दुबई से, तो बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँच हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो,
6: हेलो भारती जी,
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: आपका भी स्वागत है। खाना होना तो अभी नहीं हुआ होगा?
5: नहीं, अब होगा, दोपहर न्यूज जब चलेगा तब।
6: पानी होने पीते रहते हैं?
5: जी जी बिल्कुल, हम लोग पीते रहते हैं। और
6: गर्मी पड़ रहा
5: आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: आज तो गाना सुन ले बनी नाम फिल्म से
5: गाने के बोल
6: आई है।
5: गाना सुनाना भी है?
6: जी,
5: गाना बहुत ही खूबसूरत बा।
6: चलिए
5: रेडियो रूम में और गाना प्ले करते नहीं, एंजॉय करिए अपने गाने के।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग नाम मूवी से चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हमारा भी सॉन्ग बजा दीजिएगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नया मंसारी जी जमतारा से, और लिख रहे हैं क्या खूब सॉन्ग है। तो बात तो सही है, खूबसूरत सॉन्ग है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ है और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं भारती जी प्लीज़ आज मेरा गाना बजा दीजिएगा और मेरा एक सप्ताह पूरा हो गया। और इनकी तरफ से वॉइस के माध्यम से पहुँची हुई है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस। वैसे इनकी आवाज़ तो इसमें क्लियर सुनाई नहीं दे रही है और समझ नहीं आ रहा है क्या है। और इनकी तरफ से गाने की लिंक भी पहुंची हुई है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सॉन्ग है। और गाने के बोल हैं दिल तोड़ के, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955 97644।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दिलीप शर्मा, लिख रहे हैं कि आरा छपरा बलिया चाहे पटना सिवान बा केहू चैन से नइखे, बड़ा सब लोग परेशान बा, बाप बेटा से, जनता नेता से, नीमन बेकार से, पटीदार से और गरीब रुपया से, अमीर दुखिया से, पंचायत मुखिया से, के बा यहाँ पुरुषोत्तम जे दूसरा के उपाय दी, जिन्हें देखा उन्हें बस परेशान लोग दिखाई दी, मड़ई मकान से, अंग्रेज पाकिस्तान से, बॉलीवुड साउथ से, संजू सैमसन आउट से, और प्रशासन चोरी से, भोजपुरी ढोड़ी से, और देश बेरोजगार से, पवन खेसारी से, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, मुझे गाना सुनना है। हेलो मैम, एक गाना सुना दीजिएगा। और सुनील यादव जो कि जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती मैम, और गाना सुनना है, और लिख रहे हैं कि मेरा गाना बजा दीजिएगा, और गाने की जो बोल है यहाँ पहुँची हुई है, और गाने की बोल है प्यार के बोल बोले काली कलाई में कंगना, प्यार के बोल बोली कलाई में कंगना। और मैसेज करने वाले हैं मनीष रजाक, और चले बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: तो अभी हम लोग ने सुना मनीष जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि उससे पहले हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंच हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या ही इनकी फरमाइश। काफी देर से कॉल कर रहे हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: कैसी हैं?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: भी बढ़िया है।
0: नाम बता दीजिएगा अपना।
1: नाम तो ये ढेर सारे लोग हैं, किस किस का नाम बताएं?
0: नहीं, अपना ही बता दीजिए।
1: उषा बोल रही
0: हूँ। अच्छा जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको? गाना सुनाना भी चाहेंगी?
1: हाँ, सुनाना चाहूंगी ना अपने स्टूडेंट्स को।
0: अच्छा जी,
1: और आप बैंड कितने लोग सुनते हैं सभी
0: लोग? जी जी, तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: थैंक्स,
0: वेलकम। काफी अच्छी कुछ।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97-7-14-86-164।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम। और मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78

8291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। जी हाँ, 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दुर्गेश आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रही हैं कि विमल कुमारी, और मुझे भी गाना सुनना है और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है। और गाने की बोल है कि तेरी दो टकिए की नौकरी में मेरे लाखों का सावन जाए, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना है विमल जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अभी मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सोनी मैम जी आप आ गई निका, और लिख रहे हैं कि आप कहाँ चली गई थी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, सोनी मैम अभी नहीं आई हैं और मिस तो उन्हें हम सब भी कर रहे हैं। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मेरा गाना प्ले कीजिएगा मैम, और यहाँ गाने की जो बोल पहुंच हुई है, और गाने की बोल है गया से पटना रेफर कैले बा, और लिख रहे हैं कि विक्रम चौहान नवादा से सुनना चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और सुनेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: बरसों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
4: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
6: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जांच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और अलिनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
7: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
8: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर व मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
10: ठक ठक
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
12: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
11: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
10: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
12: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
14: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
15: भरोसे वाले से लेंगे,
14: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
15: और कीमत भी।
14: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
16: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
17: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
12: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
18: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
12: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
19: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
12: कॉल करें 85070-32042 पे।
20: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
21: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
20: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
21: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
20: संपर्क करें 9939365923।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
22: ऑलराइट।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
2: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AMZ पर।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या

0: 9162933538.
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710392 या 9765065750।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि दुर्गेश आजमगढ़ से, और लिख रहे हैं कि सॉन्ग आज अभी और इसी वक्त बजा सकती हैं क्या? तो आपकी तो बारी आज नहीं है, इसीलिए नहीं बजा सकती। तो बहुत बहुत स्वागत है लड़की नाम का। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कोई भी गीत में शामिल कर लेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। और गुरु नानक पूरा बटिंदा पंजाब से किशोर सबलेनिया, सावित्री सबलेनिया और सुमन सबलेनिया बेटी अंशु जी के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं राधे राधे जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हाय नमस्कार, मैं भी जुड़ गया हूँ रेडियो रिमझिम से, और सुनील कुशवाहा मैहर एमपी से जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं कि गाने की बोल आँख मेरे यार की झुकी है, और भारती मैम कल हमारा गाना नहीं बजा था तो प्लीज़ आज बजा दीजिए। और चलिए कोई बात नहीं, आपका गाना प्ले कर रहे हैं, और तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, आंख मेरी यार की दुखे आंखों में आ गई लाली, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बाबा सूरत यूएन पटिया से जुड़े हुए हैं और मेरा भी सॉन्ग बजा दीजिएगा, 25 दिन हो गया है। तो काफ़ी दिनों के बाद जुड़े हैं और कोई बात नहीं, आपका भी सॉन्ग प्ले हो जाएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँच हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्कार भारती
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
1: कैसन बानी?
0: हम तो ठीक बानी, रोवा बताई रोवा कैसन बानी?
1: बढ़िया बानी। गाना सुने के बा?
0: बता दी कौन सा गाना सुने के बा?
1: कौन सी जय खाई के पान बनारस वाला?
0: और गाना सुना हो बा?
1: हाँ, सबसे पहले रुआ गए रेडियो रिंगी जितना सुना था सबका सब कोई गए अपना घर को लाके सब आगे बैठ के सुने के बा।
0: और सब ठीक बानू?
1: हाँ सब बढ़िया बा।
0: तो चलिए और गाना प्ले कर दे बनी रेडियो रिमझिम पे, एंजॉय करिए अपना गाना के। प्रणाम। वैसे गाना खेसारी लाल के ना और पवन सिंह के ना रितेश पांडे के
2: पापा मम्मी के लिए बेस्ट।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, प्रेम मदेसिया पटरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। भारती जी नमस्कार जी, कैसी हैं? गुड आफ्टरनून जी, हमारा भी हाजिर लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय नमस्ते भारती दी, और मैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से, और मुझे भी गाना सुनना है और प्लीज़ मेरे भी गाना सुना दीजिएगा। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि बाबा सूरत UN पटिया से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि मेरा सॉन्ग सुना दीजिएगा, और 25 दिन से ऊपर हो गए हैं, और चलिए कोई बात नहीं, आपके सॉन्ग को प्ले करते हैं। और गाने के बोल हैं तू

नींदों की रानी और मैं प्यार का राज, प्यार का सपना। तो बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश है, तो चलिए गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते दी, हमको गाना सुनना है और गाने की बोल पहुँच हुई है। और जो कि लिख रहे हैं कि हम शिवानी कुमारी वृंदावन से गाना सुनना है और सुनना चाहती हूँ। हमारा हमार बुआ बाड़ी रिंकी कुमारी ममता कुमारी सब के हु के साथ ही सुने एक बार। तो जी बिल्कुल आपका गाना प्ले होगा, पर उससे पहले हमारे पास जो फरमाइश आई हुई है उसे प्ले करेंगे। और जो कि हमारे पास फरमाइश आई है गुरु नानक पूरा पंडित बठिंडा पंजाब से, और किशोर सबलिनिया, सावित्री सबलिनिया, सुमन सबलिनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। तो दिख रहे हैं अपनी तरफ से कोई भी सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए आपके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18744।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
12: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। यदि आप हमसे इस शो में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788191, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277-16-65-96। और चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से रेडियो रिमझिम में जुड़ गए, और नमस्कार राम राम जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी तन की गुनगुना लेती तो अच्छा लगी, तो और लिख रहे हैं कि सोनी जी गुनगुनाती थी, और लिख रहे हैं कि भारती जी ऐसे ही लगे रही है। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा दिल्ली से, और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुनगुनाने के लिए मैम दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगली फरमाइश है कॉल के माध्यम से पहुँच हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। हाँ जी, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
13: ठीक है, हो गया लंच?
12: लंच हो गया है।
13: तो बढ़िया है।
12: जी जी, आप सब बताइए, आप सब ठीक है ना?
13: जी मैम, हम सब ठीक है।
12: अच्छा जी, तो आज कौन से गाने की फरमाइश है?
13: गाना सुना दीजिए, मत रो मेरे जान चुप हो जा, हिंदी गाना।
12: मत रो मेरे दिल चुप हो जा,
13: आपको याद हमको नहीं आने
12: दे। कोई नहीं होता है। और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
13: आप सुन लीजिएगा, जितना लोग सुने रेडियो सब कुछ सुनेगा।
12: जी जी बिल्कुल, तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो 90.4 FM में।
13: जी मैम।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मत रो मेरे दिल चुप हो जा हुआ सो हुआ, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राधे राधे, हाजी यूपी 54 से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो नमस्कार जी, कैसी हैं आप? और मैं आपकी दोस्त शाहजहाँ, और मुझे भी सॉन्ग सुनना है और क्या बज जाएगा। और यहाँ उनकी तरफ से वॉइस पहुँची हुई है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस और क्या है इनका सॉन्ग।
1: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं कौन हूँ आप सब तो मुझे जानते ही हैं। मैं हूँ शाहजहाँ, विलेज चसोर, आज मैं भी शो से जुड़ चुकी हूँ। सो आज मुझे भी सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग का बोल तो काफ़ी खूबसूरत है, और सॉन्ग का बोल है जितना भी कर लो प्यार हमको कम लगेगा, जितना भी कर लो प्यार हमको कम लगेगा, ना दूरियां बढ़ाना हमको दम लगेगा। यही सॉन्ग, और ये सॉन्ग मैं डेडिकेट करने चाहती हूँ कुछ रेड दोस्त हैं, सुनील यादव को, काजी दफ्तर सुमृति संतर को, सहीरा पकर रानी, रत्न जादू मुस्कान, दानापुर कमरानी, पाकिस्तान डिफ्रम डेली, रविंद्र संतार, पुत्र आजाद भाई चौधरी, असम जनता, आजमन से, बड़े संत सगर आलम तीर्थ संत से, शारदा खातिर टिलारपुर, रविन्द्रनाथ बालापुर कौन जी, और भास्कर जी, उत्तम सोनी जी, और मुगल बच्चे से शहाबुद्दीन जी, शहाबुद्दीन अंसारी, और जितने छुटके हैं मैं सबको सुनाना चाहती हूँ, सब सुना दीजिएगा। और मैं चलती हूँ, आपसे अपने ख्याल रखें, ओके ओके, बाय बाय।
0: तो अभी शाहजहाँ जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हो बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ैट पर।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-7-14-86-164।
7: से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में और आप सुनते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यदि आप हमसे इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं उत्तन सोनी जी की, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है शाहजहाँ जी का और सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नज़र में आपके नज़ारे रहेंगे, पलकों पर चांद सितारे रहेंगे, बदले तो बदले ये ज़माना, लेकिन हम फिर भी आपके दीवाने रहेंगे मैम आपके लिए। तो मैसेज करने वाले हैं पाजी UP 54 से, तो थैंक यू इसके लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सोनी मैडम नमस्कार, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि श्याम सुंदर संग्रामपुर से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं और वॉइस के माध्यम से छोटी सी वॉइस आई हुई है, देखते हैं क्या है और कौन सा सॉन्ग है।
8: कहाँ जाइबो राजा नजरिया लड़ाई के,
7: बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और श्याम सुंदर जी की तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं वॉइस इनका।
1: थैंक यू भारती जी गाना बजाने के लिए, धन्यवाद। गाना सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कल मेरा गाना नहीं चला ही, थोड़ा तकलीफ हुआ है। सबसे लास्ट में हमारे गाना बजाती हैं, कल मैंने मतलब हमारा गाना ही नहीं चलाई। आप कितने बार लिख कर भेजे, आप बजाई ही नहीं, क्यों?
0: तो मैं आपको बता दूं कि मंगलवार के दिन आपका दिन पूरा होता है, इसलिए मैंने आपका गाना प्ले नहीं किया, और आज आपका दिन था इसलिए मैंने प्ले कर दिया। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि इतना दिन से कहाँ थी मैडम जी, रहीम आलम नरकटिया बाजार से, योगेश कुमार फैशन टेलर नरकटिया बाजार से, और लाल बाबू कुमार पटरा टोली से, और साजिद आलम बेंगलोर से, और गाना सुनना है तो आपकी आवाज़ सुनना है, और आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए थे। तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी भारती ही बोल रही हूं, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सोनी जी नहीं आई हैं। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते दी, हमको भी गाना सुनना है, और गाने के बोल हैं, कहे के तो सब केहू आपन, आपन कहाए वाला केवा, और हम शिवानी कुमारी वृंदावन से और गाना सुनना चाहते हैं, और बुआ बड़ी रिंकी कुमारी ममता कुमारी सब केहू के सुने के बा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और चलिए आपके गाने को प्ले कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और यहाँ शिवानी जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए और सुनाने के लिए, तो एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो कि बिना देरी किए अगले मैसेज को शामिल करेंगे, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। और लिख रहे हैं कि भारती जी, मेरा भी सॉन्ग थोड़ा प्ले कर दीजिएगा और मुझ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मुकेंद्र कुमार कुशवाहा दुबई से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ उनके तरफ से वॉइस पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
4: हेलो दिव्या मैम एंड भारती मैम, गुड आफ्टरनून। मैं मुकंदर कुमार कुशवाहा बंजारी से, मुझे आज सॉन्ग सुनना है माँ ओ मेरी माँ पास बुलाती है मुझको।

0: यही सॉन्ग है, सुना दीजिए। और कौन सा मूवी का ये नहीं बता सकता, तो ये सॉन्ग सुना दीजिए। ओके, और सोनी मैम जी आप सुन रही हैं तो आप भी सुनिए। और हरकेश राज हैं, पायल राज, चुलबुल, किरण कुशवाहा और जितने दोस्त मेरे नाम से जानते पहचानते हैं उन सभी दोस्तों के लिए। ओके, थैंक यू।
1: मुकिंदर जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि मूवी है जानवर, और गाने की बोल है पास बुलाती है कितना रुलाती है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रंजन 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोगों को सुना मुकंदर जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ सभी की तरफ से बाय बाय के मैसेजेस पहुँच रहे हैं और लिख रहे हैं बाय बाय मैम। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश है कॉल के माध्यम से पहुँची है, और चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। नाम बता दीजिएगा अपना।
1: नूर बात कर रही हूँ हसना से।
0: जी जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं?
0: हम सब भी अच्छे हैं। तो कौन सा गाना सुनना है आपको? गाना बता दीजिए कौन सा सुनना है। जीत मूवी का?
1: नहीं, अरिजीत सिंह।
0: अरिजीत सिंह का सॉन्ग आप नहीं बताइएगा कौन सा सॉन्ग सुनेंगी उनका?
1: मतलब कोई भी सुना दीजिए।
0: तो चलिए उनका गाना प्ले कर रहे हैं और इसी के साथ और गाना सुनाएंगे भी किसी को? ओके जी, रेडियो रंजन में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788191। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से लूँगी विदा। और सुनते रहिए ये प्यारा सा सॉन्ग रेडियो रंजन 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: राम नाम आधार बा एह जीवन में यही से कवि कहतड़े देखी का कहतड़े
1: राम नाम रस पिय भैया हँसी हँसी ना तो फँसी जइब।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
10: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
9: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
11: रात होई ता बिहान होई बेकरी, खैला से बेसी होई ता जियान होई बेकरी, और खिलल बगिया जब उजड़ी ये भाई जी, ओ जगहिया पर बिरान होई बे करी। गीतवा

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: देखी जब हमनी के माता के गर्भ में रही ले जा, तो भगवान से यह प्रार्थना करेल आदमी कि हे भगवान, एह नरक कुंड से हमरा के बाहर करी। अब हम जब बाहर आए तेरा और नाम गुन गायब, और यहाँ आके हमनी के भुला जतनी जा एह माया में। यही पर कवि विश्वनाथ राजपुरी जी के ई रचना बा, देखी वहाँ का कहतनी।

0: सुनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
2: बोलबम, हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9495121100001।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
5: All right.

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: All right.

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: Now pick it up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, मुश्किल में किसी को याद करो, लम्हा अपने आप मिलेंगे। मुश्किल में किसी को याद करो, लम्हा अपने आप मिल जाएंगे। वक्त निकालो मिलने, बहाना तो अपने आप मिलेगा। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी, मैं कमरान रफी, डिस्ट्रिक्ट सिवान, जिले चौकड़ी सुल्तान, फिलहाल अभी दिल्ली में हूँ। कैसी है?
2: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हाँ, हम तो बढ़िया है, एकदम फासिला चल रहा है। उधर का मौसम का हाल चल
2: है? इधर का मौसम अभी तो ठीक है फिलहाल।
1: इधर तो दिन बारिश हुआ था बीच में और कल से धूप हो रहा है, गर्मी तो हो गई है। गर्मी तो अभी चलेगा समझ लीजिएगा। सुबह दिल्ली में और बिहार में ठंडा गर्मी ज्यादा ही पड़ता है।
2: इधर गर्मी भी ज्यादा ही पड़ेगा और ठंडा भी वैसे ही पड़ता है।
1: नहीं, ठंडा तो समझिए कि खूब पड़ता है, तो दो महीने में। गर्मी तो समझ लीजिए, गर्मी अप्रैल से चालू हो रहा है, एकदम अप्रैल से अक्टूबर तक। ठंडा तो नवंबर तक भी चालू नहीं, दिसंबर चालू हो रहा है, फरवरी तक। गर्मी के कारण है कि पेड़ पौधे लोग काट दे रहे हैं और कहीं भी बाग बगीचा कम होते जा रहा है, कुआ का पानी नहीं है, इनार बंद है, ये सब ही नतीजा है ना। ऑक्सीजन का जो क्या है, मुफ्त कहाँ मिले, यही बात है। और सबका नाश्ता वास्ता तो हो गया होगा?
2: हाँ हाँ, सबका नाश्ता हो गया है।
1: रिमझिम सब सही है?
2: हाँ हाँ, सब कोई सही है।
1: मैं तो रिमझिम का बहुत पुराना लिस्नर हूँ
2: जी।
1: मैं तो मुझे 2009 में इसकी सपना हुई थी और मैं रिमझिम में हमेशा जुड़ता था, रेगुलर लिस्नर। अभी तो बीच कभी कभी जुड़ जाता हूँ। हेलो कुछ भी मैं खेलता था पहले, 6 बार विनर भी बना था मैंने।
2: अच्छा।
1: और हमको गिफ्ट भी मिला है, मैं आया भी हूँ। और जो जो मेन डायरेक्टर सर है उनसे हमसे बहुत जमता है।
2: अच्छा।
1: और हमको बहुत मानते हैं। हाँ, बहुत जमता
2: है। अच्छा।
1: उनको बुलाए थे, मैं आया था। तो रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है उनको। रेडियो क्या कि हर चीज बताता है, फिर गाना ही नहीं सुनाता।
2: जी जी।
1: और रेडियो जिन तो बहुत बढ़िया चैनल है और इसके जितने आरजे आए सभी बढ़िया है। सबसे हमको जमा बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा लगा था भी। आपको व्यवहार सबसे बड़ी चीज है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए।
2: हाँ, ये तो बात सही है,
1: बात व्यवहार होना चाहिए। अरे क्या है, आप ही हैं, हम कहीं हैं, जब तो है स्टेशन में तो बातचीत हो रही है ना।
2: जी जी।
1: आपको जब लिएगा थोड़ी बातचीत, तो उतने दिन खाली व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। कोई भी याद करेंगे, हाँ भाई हम थे, तो वो गाना सुना दीजिए।
2: बता दीजिए।
1: फिल्म का नाम है मोरा, गाना है ना कजरे की रात।
2: जी जी।
1: ये सॉन्ग सुना दीजिएगा।
2: ओके जी। और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
1: हाँ हाँ, डेडिकेट रहेगा। मैं बता दूँ की मैं इसलिए गाना सुन रहा हूँ, कल सुनील सुधी का जन्मदिन, तो कल तो रिकॉर्डिंग होगा नहीं, तो उन्हीं पे गाना है ये। इसलिए कल जन्मदिन है, इनका जन्म 11 अगस्त 1961 में हुई थी और इन्होंने डेब्यू किया था मनोहन से। तो डेडिकेट में बोले आपको और तबलम सिद्दीकी, आयशा, सबीना, रब्बा, शाहजहाँ, हेना हाजरा, रोशनी कुमारी, निशा भारती, निशा सुकुनुआ और दिलीप राम, अहमद अली अख्तरी, बुढ़िया परमीन और समीर आलम, गुलाम हुसैन, डाकर, भरजू, उमा शंकर, दिवेंदर, मुकेश, सोनी और जितने लिस्नर हैं, साजिद अंसारी, कुछ नाम छूट रहा है कोई नहीं, इतना तो नाम हो ही गया, बहुत नाम हो गया। असल में अगर कोई मेरा नाम लेता है तो मेरा भी तो फर्ज है ना लेना भाई।
2: जी जी बिल्कुल।
1: ये सब हम ध्यान बहुत ध्यान रखते हैं सब, क्योंकि हम यही कहते हैं जो मेरा जब करेगा हम उसका करेंगे, जो मेरा हमको अच्छा से रहेगा उसे जमा करेंगे। अच्छा लगा बात करके। ओके
2: ओके, नमस्ते। रेडियो रिमझिम में कॉल किया।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94.4 एफएम में।
0: जी सुंदर को।
1: जी जी
0: जी बोलिए सर।
1: गाना बता देंगे कौन सा सुना है आपको?
0: मैंने सुना जो सेवन टायर में मेल बैंक को भी के सेवन टायर
1: में गाना डेडिकेट भी रहेगा।
0: अमन सिंह।
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनत नहीं रेडियो रिमझिम 94.4 एफएम।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, Glamour X 1,01,354 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-21 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AM पर।
1: नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Now pick your phone up.
6: Hello. जब फोन गिनने बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: हेलो,
8: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। नमस्कार,
9: मनीष राजा भाई ने कुछ नहीं बोल रहे।
8: जी जी, कैसे हैं आप?
9: ठीक है, अपना बताइए।
8: हम भी ठीक हैं।
9: क्या हो रहा है?
8: तो नहीं, बस आप सभी से बातें हो रही
9: है। गाना सुनना है, सुना दीजिए।
8: कौन सा गाना?
9: बोलबम का गाना सुनना है।
8: और गाने के बोल?
9: बोलबम का कोई भी गाना सुना दीजिए, खेसार लाल यादव का पुराना गाना।
8: और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
9: सबसे पहले आपको और पूरा रेडियो सुनने वाले बताओ।
8: और सब ठीक है?
9: और सब ठीक
8: जी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
1: जी बता दीजिए, कौन से गाने सुनने हैं आपको?
0: KR Ghoshal की आवाज में भरी सॉन्ग है मुश्किल है।
1: ओके जी, और गाना डेडिकेट भी है
0: जी आपको और रवि वाले।
1: जी जी
0: गा के भी मैम
1: बिल्कुल गा दीजिए।

0: आप तो बहुत अच्छा गाती हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: और गाना डेडिकेट भी है किसी को?
1: जी याद हो, सभी सुनने वाले लिसनर्स।
0: जी जी, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 91.4 FM।
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो,
12: अस्सलाम वालेकुम।
13: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
12: रेशमा पठानपुरी से।
13: जी जी, कैसी हैं आप?
12: ठीक बानी, असम कैसे?
13: सुनियो की ठीक बानी सन।
12: अच्छा सो गए?
13: हाँ, नाश्ता हो गई बाबे।
12: अच्छा गाना सुन लो लिया?
13: सुननी है।
12: दो वाली गाना सुन लो नहीं, 6 बजे सुना है शाम के, 10 बजे सुननी है।
13: चलिए ठीक बात।
12: आप और कभी नहीं मैडम हॉस्पिटल एक्सप्रेस ना चलू का?
13: चलू लेट से चलू
12: है। ना चालू हो रहे?
13: हाँ हाँ, रेडियो हमारे 18 घंटा से बंद हो गए हुए।
12: हम कहते हैं बात हुई से ना चालू हुई।
13: मशीन में दिक्कत आ गई हुए, उसके वजह से फिर 2:30 बजे से रेडियो स्टार्ट हो गए।
12: 2:25 बजे चेक कॉट है ना चल रहा, मोबाइल फूट गए रेडियो सुनने के चक्कर में। हाँ, रेडियो मोबाइल दोनों समय उठा के लिए तो दुआर मोबाइल करा के तब फोन लगा रहे थे, इसलिए गिर गए मोबाइल।
13: ना इतिया और सब ठीक बात। तब बता दी कौन सा गाना सुनेगी?
12: आज गाना सुना दे, कितना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को ना चाहे।
13: डेडिकेट है।
12: हाँ सुन ले, तो कोई सुनी।
13: अच्छा जी, चलिए ठीक बात। तो फिर गाना प्ले करता नहीं, सुना नहीं रेडियो 90.4
12: ठीक बात। आज बाजी में गा रहा,
13: देखो तो नहीं कब बाजेला।
12: अच्छा ठीक बात,
13: ठीक बात।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
1: की तुम्हारे ब्याह फ्रॉम जादूपुर।
0: जी जी, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है, आप कैसी हैं?
0: हम भी ठीक हैं।
1: और सब बढ़िया है ना?
0: हाँ हाँ, क्या हाल चाल है सबका घर में?
1: सब बढ़िया है।
0: अच्छा जी, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: एक सॉन्ग है, भोजपुरी है।
0: जी बिल्कुल, बता दीजिए कौन
1: सा। हम दूसरा के दीवाना भेजा।
0: अच्छा, और गाना सुनाना भी है किसी को?
1: और रेडियो फैन सुनेंगे और हम भी, आप भी।
0: जी जी बिल्कुल। ओके जी, फिर गाना प्ले करें, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: ठीक है, थैंक यू।
0: वेलकम।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 या 9956 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हाँ हेलो, नमस्ते।
7: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: कैसी हैं?
7: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: बढ़िया।
7: नाश्ता हो गया आपका? हो गया।
6: हाँ, मेरा भी हो गया।
7: वो नहीं गया, आज फास्टिंग है।
6: आज फास्टिंग है, आज मंडे है ना?
7: हाँ हाँ, आज मंडे है।
6: सुनना था
7: जी, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
6: बहुत प्यार करते हैं तुमको सुनेंगे।
7: अच्छा, और गाना डेडिकेट भी है
6: सबको।
7: जी जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो मैम, सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी मैम, हम मैं सिकंदरपुर से बोल रहा हूँ, स्कूटर।
0: हाँ जी
1: मैम, एक गाना फरमाइस किए थे हम, दो हफ्ता हो गया, मेरा गाना क्यों नहीं बजा?
0: दो हफ्ते हो गए।
1: हाँ, अगले जुम्मे को मैं फोन किया था, साथी जीवन साथी यही गाना था।
0: इसी जुम्मे को?
1: अगले जुम्मे को किए थे।
0: ओ पता नहीं, लेकिन जो इस जुम्मे की फरमाइश हुई है जिनकी, उनका कुछ कॉल मेरे पास बचा हुआ है जो कि आज ले होगा।
1: अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं मैम?
0: मैं भारती हूँ
1: जी। अभी तो प्रोग्राम सुन ही रहे थे हम, नहीं बजा मेरा गाना आज भी?
0: नहीं, रिपीट बज रहा होगा। शाम को नया नया चलता है, स्ट्रेस चलता है एजेंसी।
1: हाँ,
0: तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: जान मूवी का गाना सुना दीजिए। प्यार किया टकराया शीशा टूट गया, यही गाना है।
0: कौन सा?
1: प्यार किया तो पाया शीशा पत्थर से टकराया, ऐसा ही गाना है, शीशा टूट गया।
0: ओके जी, और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
1: सबसे पहले आपको मैम।
0: अच्छा जी,
1: और जितने रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं सभी को पाए।
0: ओके जी,
1: ठीक है मैम।
0: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: पत्थर। डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
2: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।
7: Now pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
7: Pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
9: Jab phone kehte bajte hai to kehte hai
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: जी
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
8: रंजन बोल रही हूँ।
6: हाँ जी, कैसे हैं आप?
8: बढ़िया।
6: तो क्या हो रहा है अभी?
8: अभी नाश्ता हुआ, काम कर रहे हैं, जो काम हुआ काम चालू कर रहे हैं।
6: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है। तो बता दीजिए कौन से गाना सुनना है आज आपको?
8: सुना दीजिए, हीरो नंबर वन गोविंदा का मूवी है, उसमें गाना है मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से।
6: जी जी है,
8: सुना दीजिए।
6: गाना डेडिकेट भी है
8: जी, इतने श्रद्धा सुनेंगे हम, सुनेंगे आप लोग।
6: जी बिल्कुल। तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
8: आज शाम को प्ले हो जाएगा? कल?
6: आज नहीं तो कल हो ही जाएगा।
8: ठीक है, आइए प्ले कर दीजिए।
6: बिल्कुल।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी बिल्कुल, आपका जिला देवघर झारखण्ड से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं मैम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: उधर गोपालगंज का मौसम कैसा है मैम?
0: गोपालगंज का मौसम तो अभी ठीक है।
1: बारिश वगैरह हो रही है?
0: नहीं, बारिश तो नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम ठीक है।
1: ठीक है ना, इधर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, मौसम इधर भी ठीक। आज सुना दीजिए मैम,
0: बता दीजिए।
1: पुरानी फिल्म है तू हसीन में जवान, फिल्म का गाना धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म है, सुमन कल्याणपुर की आवाज में।
0: और गाने के बोल क्या है?
1: गीत के बोल है आमदेव जैसी तेरी सुरतिया।
0: जी, और गाना सुनाना भी है?
1: जी जी, सबसे पहले मैं आपको रेडियो रेमी के जितने भी श्रोतागण है सबको सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रेमी।
1: जी।

0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
11: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
12: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87894 18744।
15: Now pick it up, pick it up. Now pick your phone up. pick it up, pick it up.
16: Hello?
15: Now pick your phone up.
17: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो,
19: नमस्ते।
18: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में।
19: कैसे हैं मैडम जी?
18: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
19: ठीक हूँ मैं।
18: अच्छा जी, क्या कर रही हैं अभी?
19: अभी आपके पास फोन लगा रहे हैं।
18: अच्छा, नाश्ता हो गया आपका?
19: जी हो गया।
18: हाँ हाँ, हम सभी का हो गया।
19: और बताइए समाचार कैसे
18: हैं? समाचार ठीक है। और कौन सा गाना सुना है आपको?
19: गाना सुनाइए, राष्ट्रीय गाना।
18: कौन सा?
19: 15 अगस्त वाला गाना, राष्ट्रीय गाना, शर्मा फिल्म का।
18: अच्छा जी,
19: चलिए राष्ट्रीय गाना है।
18: गाना किसी को सुनाना भी है?
19: जी मैडम जी, आपको जितना रेडियो रंजन दोस्त है, आरजे सब है, सोनी मैडम, मनोरमा मैडम
18: जी
19: आप है, और जितना लेजेंड है सबके।
18: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
19: जी मैडम जी, नमस्ते।
18: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ठीक है, आप बताइए आपका क्या हाल है?
1: इधर का मौसम कैसे हो रहा है?
0: इधर का अभी मौसम ठीक है,
1: बारिश हो रहा है?
0: नहीं, बारिश हल्का फुल्का कभी कभी,
1: मतलब मौसम थोड़ा ठंडा ही होगा। तो हमको एक गाना सुनना था।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
1: गाना बोल है, हर आदमी को बीबी का गुलाम होना चाहिए, और ये गाना जितने वाले श्रोता है हमारे मनान भाई है उसको सुनवाना चाहता हूँ।
0: जी जी, ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगटोन 90.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
11: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
12: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
12: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी,
16: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
17: नमस्ते जी, राधे समरसिया कबीरपुर गांव से करतर हुआ से बतिया।
16: हाँ जी, कैसे हैं आप?
17: बिल्कुल मस्त है, अपना सुनाइए घर परिवार।
16: हम सभी ठीक हैं, घर परिवार में भी सब कोई ठीक है।
17: चलिए भोलेनाथ बनाए रखे आप लोग। तो फरमाइश की तरफ बढ़ चले क्या?
16: बिल्कुल बढ़िए।
17: गाना सुनना है और राधा पौडवाल की आवाज में एक लाइन गाकर बता रहा है।
16: बिल्कुल बताइए।
17: आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो, यही सुनना है हमें।
16: ओके जी, और डेडिकेट भी रहेगा गाना
17: जी? सबसे पहले आपको और श्रुति बहन को और गोपालगंज जिले के सुपर स्टार फिल्म है आप लोग घोषणी आराम मलिक है और सांतरा कुशवाहा जी है और सभी गोपालगंज जिला वासियों को, सिवान जिला वासियों को आए हम बने
16: जी। चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार बाबा, आपका रेडियो
0: जी। मनोज कुमार जी, क्या हाल चाल?
1: हाल चाल ठीक है, आप अपना?
0: हम लोगों का भी ठीक है। हम धनाव से बोल रहे हैं, धनाव से साथ मास्टर के साथ मास्टर। पहचान गए?
1: हम तो पहचानते हैं, लेकिन आप मुझे पहचानने में गलती।
0: अच्छा, भारती जी क्या बोल रहे हैं?
1: हाँ।
0: आवाज आप लोगों को मिलता जुलता है।
1: और सब? और सभी आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम लोग भी ठीक है। बारिश भी हो रहा है आजकल, रोजे एक दो झलक आ जा रहा है बारिश। जब शुरू में ट्राई कर रहे थे तो बहुत बिजी बता रहा था, सोचे कि चलिए लास्ट में कर देते हैं।
1: शुरुआत में थोड़ा ज्यादा बिजी रहता है।
0: बहुत ज्यादा रहता है, तो पहले फर्स्ट में हम कॉल कर चुके हैं बहुत बार। ये सब ठीक है। गाना सुना दीजिएगा। मूवी का नाम है, गा के बता दे रहे हैं।
1: बिल्कुल।

0: मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के आवाज में है
1: जी।
0: और सबसे पहले आप लोगों को सुनवाना चाहता हूँ और जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को और हम लोग रोशन टेलर में सुनेंगे आपका मेरा गाना बजेगा तो बनाव से
1: और फिर गाना प्ले करते हैं सुनते रहिए रेडियो रंजन।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा तो कौन

0: 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97-7-14-86-164।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
7: अस्सलाम वालेकुम मैम।
6: वालेकुम अस्सलाम,
7: क्या हाल चाल है जनाब?
6: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
7: मेरा भी बहुत अच्छा है। नाश्ता पानी हो गया है?
6: हाँ हाँ, नाश्ता करके आते हैं घर पे।
7: अब ड्यूटी चल रही है नहीं?
6: हाँ।
7: कितना बजे से कितना बजे तक?
6: अभी 10 बजे से 6 बजे तक।
7: 10 से 6 तक रहती हैं आप?
6: आप सब बताइए, आप सब क्या कर रहे हैं?
7: हम अभी कपड़ा काट रहे थे। कपड़ा की शूटिंग करते हैं।
6: अच्छा जी, सिलाई करते हैं?
7: जी सिलाई करते हैं।
6: चलिए सब तो बढ़िया है।
7: तो रेडियो रिंगटोन भी हम लोग यूज करके क्या सुनते हैं, और कपड़ा भी अच्छा तरह से मतलब सुनते।
6: चलिए बढ़िया है।
7: और लाल को काम को भी फरमाइश सुनते हैं। हेलो मैं जाए,
6: आज बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है?
7: गाने की फरमाइश और सावन मोहब्बत बता देना। तो सावन आया है, सावन का तो महीना चल रहा है। ये गाना सुना दीजिएगा और रातों भी डेडिकेट करना चाहते हैं। और सभी रेडियो जितने सुनने वाले हैं दोस्तों को डेडिकेट कर।
6: जी जी बिल्कुल। तो चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 91.4 FM।

0: हाँ मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम।
1: नाम बता
0: गाना सुनना है? बोल रहे हैं रखुआ से।
1: अच्छा जी, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: गाना नहीं है, दिल के पतिया पर लिखा भी पतिया।
1: अच्छा, और गाना डेडिकेट है
0: या?
1: गाना किसी को सुनाना चाहते हैं आप?
0: हाँ, जितना लोग सुन रहे हैं सब किसी को साथ और आपको भी।
1: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।
0: जी मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029994911 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
6: नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
7: बोलबम, हर हर महादेव।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434068 पे।
14: एपिसोड नंबर 43, 43।

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिव जी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाई ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
9: एपिसोड 44

कैलाश पर्वत पर शिवजी के विश्राम स्थल शीतल मंद सुगंधित पयार देने वाले बरगद के नीचे शिव तथा पार्वती विराजमान हैं। पार्वती श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, वो कारण जानने की जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। श्री राम के अवतार की कथा, उनका उदार बालचरित, जनक सुता से विवाह तथा ये जानने की कि किस दोष के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, राम के वनवास, रावण वध तथा उस प्रकरण की अन्य लीलाओं के अतिरिक्त वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सा तत्व है जिसकी अनुभूति में ऋषि मुनि निमग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का रहस्य क्या है? इन ढेर सारे प्रश्नों द्वारा प्रकट जिज्ञासा के अतिरिक्त वो सभी तथ्य भी जानना चाहती हैं जो अनपूछे रह गए हों। पार्वती के सहज निष्कपट प्रश्न सुन महादेव आनंद विभोर हो गए। श्री राम की प्रीति तथा भक्ति से उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
0: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील। विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का किया आह्वान। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को मिला कानूनी संरक्षण। गायन में बाधा डालना अब होगा दंडनीय अपराध। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित। 20% से अधिक एथेनॉल मिलाने का नहीं हुआ है फैसला। और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में बांका और नवादा जिले में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाने की अपील की है। सोशल मीडिया पर साझा एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से 15 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाए, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दे, विकसित भारत का संकल्प ले। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, साइकिल रैली और सामूहिक वंदे मातरम गायन जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: हर घर तिरंगा अभियान के तहत सुपौल के मरौना प्रखंड में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने प्रभात फेरी निकाली। औरंगाबाद, शेखपुरा, कैमूर और अररिया में आयोजित तिरंगा यात्रा में अधिकारी कर्मी, स्कूली बच्चे, जीविका दीदियां और एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। बिहार शरीफ में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए। रोहतास के सासाराम में स्वास्थ्य विभाग ने तिरंगा यात्रा निकाली। सहरसा में जिलाधिकारी दीपेश कुमार के नेतृत्व में सामूहिक वंदे मातरम का गायन हुआ। वहीं मधुबनी में SSB की ओर से हर घर तिरंगा साइकिल रैली निकाली गई। अन्य जिलों में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। समाचार कक्ष से निधि श्री।
0: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान को अब कानूनी संरक्षण मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों से पारित इस विधेयक के कानून बनने के बाद वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण मिलेगा। कानून के तहत राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकना या इसमें बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। ऐसे मामलों में 3 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इस संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विपक्ष के हंगामे के बीच बाधित हुई। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल स्पष्ट किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्रों से संबंधित मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। भोजनावकाश के बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच लोकसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने संबंधी केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वहीं राज्यसभा में भी गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्य सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक में विभिन्न राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग गठित करने का प्रावधान है। लगातार हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। E20 पेट्रोल पर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम वैज्ञानिक तरीके से सुनियोजित ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में वाहन निर्माता कंपनियों, तेल विपणन कंपनियों और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ने मिलकर काम किया है। मंत्री ने बताया कि प्रयोगशाला परीक्षण और फील्ड ट्रायल में तय मानकों के आधार पर E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित पाया गया। पुराने वाहनों में भी इसके इस्तेमाल से वाहन के प्रदर्शन पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया। श्री गोपी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। श्री गोपी ने यह भी बताया कि डीजल में इथेनॉल मिलाने का परीक्षण निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतर सका। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और वाहन निर्माताओं के सहयोग से डीजल में इथेनॉल मिश्रण की वैज्ञानिक जांच और परीक्षण किए, लेकिन अपेक्षित मानकों पर सफलता नहीं मिलने के चलते डीजल में इथेनॉल मिश्रण का प्रयोग फिलहाल संभव नहीं है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने प्रखंड और जिला स्तर पर शिकायतों के निष्पादन से असंतुष्ट 181 आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इसके तत्काल निपटारे के आदेश दिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी विषय के शिक्षकों के साथ कथित भेदभावपूर्ण और नियम विरुद्ध व्यवहार का आरोप लगाते हुए स्थानांतरण सूची की स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा की मांग की है। श्री यादव ने एकमात्र विषय शिक्षक को सरप्लस घोषित कर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया रोकने, नियम विरुद्ध तबादले रद्द करने और उर्दू, अरबी, फारसी के स्वीकृत पद समाप्त नहीं करने की भी मांग की। उन्होंने अनुदानित मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक कर्मियों की लंबित वेतन का तत्काल भुगतान करने की भी मुख्यमंत्री से मांग की है। भाजपा ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल छात्र आंदोलन को लेकर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने संसद की कार्यवाही बाधित किए जाने पर भी विपक्ष की आलोचना की। आज शहीद दिवस है। वर्ष 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान आज ही के दिन प्रदेश के 7 विद्यार्थियों ने शहादत देकर पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराया था। इन 7 शहीदों की याद में बिहार में शहीद दिवस मनाया जाता है।
1: अगस्त 1942 का दिन पटना की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए कुछ छात्र सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे। मंजिल थी सचिवालय पर तिरंगा फहराना। कदम आगे बढ़े, गोलियां चली और तिरंगे को थामे 7 वीर छात्र शहीद हो गए। इन शहीदों में उमाकांत प्रसाद सिंह, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, जगतपति कुमार और राम गोविंद सिंह शामिल थे। आज भी पटना का शहीद स्मारक उन अमर युवाओं की कहानी कहता है जिनके लिए तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि आजादी का सपना था। समाचार कक्ष से संजय सिंह।
0: शहीद दिवस के अवसर पर पटना स्थित शहीद स्मारक परिसर में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अमर शहीद उमाकांत सिंह के पैतृक गांव सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के नरेंद्रपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। औरंगाबाद में शहीद जगतपति कुमार को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इधर शहीद खुदीराम बोस की शहादत की याद में आज मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय कारा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने बांका में पदस्थापित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी पटना, वैशाली और बांका में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यपालक अभियंता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकद, सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान के साथ साथ निवेश के कई कागजात बरामद किए गए। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। प्रदेश में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। बांका जिले में 5 जबकि नवादा में 3 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि बांका के सुहिया और बौसे प्रखंड में 3 महिला समेत 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं 7 अन्य घायल हो गए। दूसरी तरफ नवादा जिले के दरियापुर गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई है। ये सभी खेत में काम कर रहे थे। प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 33.6 मिलीमीटर बारिश कैमूर के कुदरा में रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग की घटना के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों ने आज विरोध मार्च निकाला। मधुबनी के रामपुर स्थित मंडल कारा में बंद एक कैदी की आज इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अररिया की उत्पाद अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी मोहम्मद फारूक को 10 साल कारावास और 1,00,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील। विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का किया आह्वान। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को मिला कानूनी संरक्षण। गायन में बाधा डालना अब होगा दंडनीय अपराध। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित। 20% से अधिक एथेनॉल मिलाने का नहीं हुआ है फैसला। और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में बांका और नवादा जिले में 8 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
3: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 62052 62112 पे।
7: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98 523 52 599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: All right.

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
6: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
7: बोलबम हर हर महादेव।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। ऑलराइट।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
11: All right.

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
4: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कोलकाता को आवश्यकता है इन अधिकारियों की। स्पेशलिस्ट ग्रेड 1 रेडियोलॉजी, स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 रेडियोलॉजी, स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी तथा वैज्ञानिक ग्रेड B। विस्तृत विज्ञापन एवं आवश्यक अर्हता श्रेणी अन्य पात्रता मानदंडों के लिए देखिए वेबसाइट www.cnci.ac.in। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग CGO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आवश्यकता है इन पदों की, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संयुक्त निदेशक अनुसंधान, रिक्तियों की संख्या 1, सहायक रजिस्ट्रार 1 रिक्ति, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी 2 रिक्तियां, प्रधान निजी सचिव 1 रिक्ति, सहायक सूचना अधिकारी, अपर निदेशक प्रचार 1 नियुक्ति, अनुसंधान अधिकारी 2 रिक्तियां, पुलिस उपाधीक्षक 2 रिक्तियां, सहायक लेखा अधिकारी 1 रिक्ति, निजी सहायक 3 रिक्तियां, निरीक्षक 6 रिक्तियां, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक 1 रिक्ति, प्रोग्रामर असिस्टेंट 2 रिक्तियां, लेखाकार 2 रिक्तियां, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 1 1 रिक्ति, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष 1 रिक्ति, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2 1 रिक्ति, स्टाफ कार ड्राइवर 3 रिक्तियां, कांस्टेबल 1 रिक्ति तथा डिस्पैच राइडर 1 रिक्ति। पदों की संख्या में बदलाव भी हो सकता है। जो उम्मीदवार पात्र हैं और एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें हर पद के लिए अलग अलग आवेदन जमा करना होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख रहेगी 8 से 14 अगस्त 2026 के रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन तक। अधूरे आवेदनों, अनिवार्य दस्तावेजों से रहित आवेदनों और निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र 8 से 14 अगस्त 2026 का। अवर सचिव स्थापना का फोन नंबर है 0112466-3278। इस पर भी आप आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन में आवश्यकता है इन पदों को भरे जाने की। साइंटिस्ट ग्रेड ई, साइंटिस्ट ग्रेड डी, साइंटिस्ट ग्रेड सी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तथा सेक्शन ऑफिसर। विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तों, वेतन, आरक्षण आदि के लिए देखिए वेबसाइट www.spmniwas.in तथा jalshakti.ddws.gov.in। इसके अतिरिक्त DOPT की वेबसाइट पर भी आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
7: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
13: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
14: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
13: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
15: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
13: कॉल करें 85070-32042 पे।
16: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
17: All right.

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा।
12: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
12: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को

0: ने अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
1: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
4: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
5: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
1: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
6: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
6: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में

0: जितने लोग मारे गए हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रमजिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रमजिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
1: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
6: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी हो गई तेज। साइबर अपराध के प्रति बच्चों को किया गया जागरूक। पासपोर्ट जांच में मिल रही भ्रष्टाचार की खबरों पर एसपी ने अपनाया सख्त रुख। न्यू पुलिस लाइन के पीछे चंवर से मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। और फंदे से लटका मिला एक महिला का शव। बुधवार को आने वाले मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी भी हो गई पूरी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर आज जिलाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे की अध्यक्षता में बैठक की गई थी। इसमें समारोह को भव्य, गरिमामय एवं सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए विभिन्न विभागों के तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में समारोह स्थल की साफ सफाई, मंच, ध्वजारोहण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, अग्निशमन, सुरक्षा, यातायात एवं पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा परेड में शामिल होने वाले दलों के नियमित अभ्यास, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा आम नागरिकों एवं अतिथियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखने को कहा गया। समारोह स्थल पर चिकित्सा दल, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, विद्युत बैकअप एवं आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। साइबर थाना के द्वारा जिले में साइबर अपराध को लेकर समय समय पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के रामरतन शाही हाई स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों को साइबर अपराध से बचाव तथा ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप फ्रॉड, जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन सिक्योरिटी तथा व्हाट्सएप टू स्टेप वेरिफिकेशन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को साइबर ठगी से बचने, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी पिन, पासवर्ड एवं अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने और अपराध होने की स्थिति में तत्काल 1930 पर कॉल करने की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध एवं नागरिक हितैषी बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। पासपोर्ट सत्यापन का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित सेक्टर पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के द्वारा स्वयं किया जाएगा। इस कार्य के लिए चौकीदार, सिपाही अथवा अन्य अधीनस्थ कर्मी को आवेदक से संपर्क करने या सत्यापन संबंधित कार्य के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। आम नागरिक की सुविधा के लिए स्पष्ट किया गया कि केवल पासपोर्ट सत्यापन के लिए आवेदक को थाना पर आने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन के क्रम में यदि किसी दस्तावेज अथवा अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक उसे निर्धारित माध्यम से थाना में उपलब्ध करा सकता है। पुलिस के द्वारा आवेदन में अंकित पता, पहचान एवं अन्य आवश्यक विवरणों का नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई चौकीदार, सिपाही अथवा अन्य कर्मी पासपोर्ट सत्यापन के संबंध में आवेदक से संपर्क करता है, दस्तावेज, जानकारी इत्यादि मांगता है, पैसे अथवा किसी अन्य अनुचित लाभ की मांग करता है या सत्यापन के नाम पर किसी प्रकार का दबाव बनाता है तो इसे निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने ऐसे संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर नियमानुसार कठोर विभागीय और विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील किया है कि ऐसे किसी भी स्थिति में किसी प्रकार का भुगतान न करें। अगर पासपोर्ट सत्यापन के लिए कहीं कोई पैसे की मांग की जाती है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 90-318-27-299 पर करें। घटना से संबंधित फोटो, वीडियो, ऑडियो, स्क्रीनशॉट अथवा अन्य साक्ष्य उपलब्ध होने पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी पुलिस अधीक्षक के इस हेल्पलाइन नंबर पर साझा किया जा सकता है। ऐसी कोई भी जानकारी मिलेगी तो पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर थाना क्षेत्र के न्यू पुलिस लाइन के पीछे बसडीला चंवर से एक अज्ञात व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि चंवर में पानी लगा हुआ था, कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे, इसी बीच लोगों ने सड़े गले शव को देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर पर ब्लैक कलर का बोल बम लिखा हुआ टी शर्ट मिला है। पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों ही बिंदुओं पर गहन छानबीन कर रही है। फिलहाल शव की पहचान करने में नगर थाना की पुलिस जुटी हुई है। थावे थाना क्षेत्र के बढ़ई हत्ता गांव में एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मृत महिला खुशबू देवी बढ़ई हत्ता गांव के मुकेश कुमार की पत्नी बताई जा रही हैं। इस घटना के बाद परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और इस मामले में आगे की जाँच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि मायके पक्ष के लोगों ने दहेज में 2 लाख रुपए नहीं देने पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया है। अब पुलिस इस मामले में मृतिका की सास और ननद को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। घटना के बाद से अन्य ससुराल पक्ष के लोग फरार बताए जा रहे हैं। पटना के उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वाई भी गिरी की माताजी के श्राद्ध कर्म में प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन गोपालगंज में होना है। इस दौरान हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री पटना से गोपालगंज बिस्कोमान भवन में पहुंचेंगे और वहां से वे वाई भी गिरी के माताजी के श्राद्ध क्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर जिले में प्रशासनिक स्तर पर जोरदार तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री के सुरक्षा और अन्य स्वागत को लेकर जिला प्रशासन और पार्टी के नेताओं ने आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। मीरगंज थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान मीरगंज हथुआ मोड़ के पास एक आरोपी को पकड़ा है। इसके पास से स्मैक जैसा नशीला पदार्थ मिला है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अंकित कुमार पिता नगीना पासवान साकिन राजमोहन कॉलोनी थाना मीरगंज का रहने वाला है। इसके पास से मिले मादक पदार्थों को जब्त करते हुए आवश्यक जाँच की जा रही है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। विजयपुर थाना की पुलिस ने मारपीट के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राजकुमार राम को गिरफ्तार कर लिया। यह विजयपुर के मझरिया गांव के राम इकबाल राम का पुत्र है। इसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विजयपुर थाना की पुलिस ने 2 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 पशुओं को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए पशु तस्करों में बलिंदर यादव पिता राम प्यारे यादव साकिन धुरहिट थाना बड़हज एवं संदीप प्रसाद पिता चंद्र प्रसाद साकिन देवरी थाना मोइल, ये दोनों यूपी देवरिया के रहने वाले हैं। इनके पिकअप गाड़ी से 3 पशुओं को पुलिस ने जब्त

0: किया है और इन दोनों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। तब यहाँ एयरफील्ड के शीघ्र परिचालन को लेकर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने नागरिक उड्डयन निदेशालय के सचिव से आज व्यक्तिगत मुलाकात की और उन्होंने संसदीय क्षेत्र हथुआ अनुमंडल स्थित सवियां एयरफील्ड के शीघ्र परिचालन को लेकर सरकार के नागरिक उड्डयन निदेशालय के सचिव से मुलाकात के बाद मांग करते हुए उन्हें आवेदन दिया। इस दौरान सवियां एयरफील्ड के वास्तु स्थिति और उसमें हुई प्रगति के संदर्भ में भी उन्होंने माननीय सचिव महोदय को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक विजय मिश्रा ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस केंद्र में लाइन डे का आयोजन किया। वहां उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना और उसको निष्पादित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। नगर थाना की पुलिस ने 665 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बसडीला चैनपट्टी नेशनल हाईवे पर छापेमारी करते हुए स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। मौके से परिवहन में इस्तेमाल स्कॉर्पियो को जब्त करने के बाद आरोपी मिथिलेश कुमार सोहनी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में आयोजित 3 दिवसीय अनुसंधान परिषद की बैठक का समापन हुआ। इस दौरान किसानों के लिए जलवायु सहिष्णु टिकाऊ और लाभकारी कृषि के समाधान विकसित करने पर जोर दिया गया। माझा थाना की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस पर पहले से मामला दर्ज था। पकड़ा गया आरोपी ओम प्रकाश यादव, पिता बाबूलाल यादव, यह माझा के श्रीरामपुर का रहने वाला है। दूसरा आरोपी शंभू यादव, पिता विश्वनाथ यादव, यह माझा के दानापुर का निवासी है। इन दोनों को आज विधिवत गिरफ्तार कर इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस दौरान इनके घर से मोटरसाइकिल भी बरामद करने की बात बताई जा रही है। मोबाइल टावर पर चढ़कर ब्लैकमेल करने का मामला लगातार जिले में बढ़ता जा रहा है। आज भी कटिया में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि अपने पत्नी को मायके से बुलाने के लिए युवक टावर पर चढ़ गया और इस दौरान वहां भारी भीड़ जुट गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे टावर से नीचे उतारा। इस दौरान कई घंटों तक यहाँ अफरा तफरी का माहौल देखा गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी हो गई तेज। साइबर अपराध के प्रति बच्चों को किया गया जागरूक। पासपोर्ट जांच में मिल रही भ्रष्टाचार की खबरों पर एसपी ने अपनाया सख्त रुख। न्यू पुलिस लाइन के पीछे चंवर से मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। और फंदे से लटका मिला एक महिला का शव। बुधवार को आने वाले मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी भी हो गई पूरी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।

0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।
7: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे समय 9:28 हो रहे हमारी स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस स्थान का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है आप लोगों को तो पुराने गाने की फरमाइश करना है, ताकि आपकी फरमाइश आप तक पहुँचाई जा सके, आपको सुनाई जा सके और आप सुन पाएँ। यदि आप नए गाने का फरमाइश करेंगे तो पूरा तो नहीं हो पाएगा और आप इंतज़ार करते रह जाएंगे। तो पुराने गाने पसंद करते हैं तो अभी फरमाएं और चलिए बढ़ा जाए, कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए कि नहीं देखा जाए। और यहाँ पे मैसेज कई पहुंचे हुए हैं और लिखा गया है कि क्या हाल है सर जी, मैं कमलेश कुमार लेज सविया फील्ड गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बढ़िया है। और अपना बताएं कि आप कैसे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका बोल मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, सुनाना है आपको। भारती जी हैं, सविता जी हैं, बबीता जी हैं, निशा जी हैं, रोशनी जी हैं, गुड़िया जी हैं और अहमद भाई, खुशबू जी, शगीर जी, राम कुमार पांडे जी, कमरान भाई, अफसर भाई, जवेद भाई, समीर भाई, मुकेश भाई, गट्टा शर्मा, उत्तम सोनी जी हैं और पंकज भाई, शाहजहां जी, सोनी जी और श्रीराम जी, तमाम सखी सहेलियों को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है प्लीज़ प्ले माय सॉन्ग। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करती हैं रुखसार जादूपुर से, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर, समीर आलम जंगलियर से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, क्या हाल है। और गाने की फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सोनू भैया कैसे हैं, मैं नैना शर्मा वृंदावन से, मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फ़िलहाल स्वागत है, बढ़िया हूँ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि तकदीर लिखने वाले एक एहसान कर दे, तकदीर लिखने वाले एक एहसान कर दे, मेरे दोस्त की तकदीर में एक और मुस्कान लिख दे, ना मिले कभी दर्द उनको, तू चाहे तो उसकी किस्मत में मेरी जान लिख दे। और इस लाइन को पहुंचाने वाले अपना नाम मनीष रजक, फाजिल नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से हैं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सोनू भैया कैसे हैं। तो बिल्कुल बढ़िया है। और स्वीटी शर्मा जुड़ी हैं वृंदावन से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सोनू भैया जी, कैसे हैं आप, मैं शो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में रोहित जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, बुलेट चौधरी तीन खड़िया से जुड़े हुए हैं, गाना सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज कई पहुंच रहे हैं तो मैसेज को रोकते हैं और गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर अगले स्लॉट में बाकी मैसेज जो भी हैं उसको शामिल करेंगे, क्योंकि गाने भी सुनने हैं। और पहले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं दिलीप जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता है।

रेडियम छी 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे एक मैसेज पहुँचा हुआ है और इस मैसेज को करती हैं रुखसार, और इन्होंने नई गाने की फरमाइश की है, तो आपकी फरमाइश हम नहीं कर पूरी कर पाएंगे। और एक और मैसेज पहुँचा हुआ है नैना शर्मा जी की तरफ से, और उनके तरफ से भी गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है जान से प्यारा। तो कौन से गाने सुनना है ये बता दें, और इसमें कई ऑप्शन आ रहे हैं, आगे की लाइन भी बताती हैं तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे में से इस पहुंचा हुआ है, और बुलेट चौधरी जी तीन फड़िया से जुड़े हुए हैं, इनकी तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे अभी, और आगे कुछ मैसेज दिखा जाए। लिखा गया है कि दिल का हाल बताना नहीं आता, किसी को ऐसे तड़पाना नहीं आता, सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़ मगर बात करने का बहाना नहीं आता। मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल बहाना ढूंढ लीजिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि भोजपुरी सॉन्ग, तो भोजपुरी सॉन्ग हम नहीं सुनाएंगे इस गाने को। आप पुराने फिल्मी गाने के फरमाइश करती हैं भोजपुरी में, चाहे जो भी श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं भोजपुरी सुनना चाहते हैं पुराने फिल्मी गाने के फरमाइश करें, हम बिल्कुल पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। काफ़ी दर्द भरा सॉन्ग रहा दिलीप भैया के द्वारा, वैसे मुझे सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक्स। मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से मैसेज करती हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया नमस्ते, अमली नौसाद दरभंगा भाजीतपुर से, आज तो आप पहला सॉन्ग ही लाजवाब और ज़बरदस्त सुना दिए, बस इसी तरह सुनाते रहिए। बिल्कुल यदि आप लोगों का साथ रहेगा तो इसी तरह सुनाते रहेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सनू जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मंकेश साहनी भैरोगंज वेस्ट चंपारण से, गाने का बोल है प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। ओहो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइशी तो पूरा करने की कोशिश है। आगे बढ़े, यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा, सुनो भाई नमस्कार, गाना सुनाने के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय, इस मैसेज को करती है शबीना खातून, और आगे कुछ मैसेज नहीं पहुंचा हुआ है तो फिलहाल स्वागत है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि आई एम वेरी फाइन, मैसेज करते हैं कमलेश कुमार विलेज सब या फील्ड से, तो बिल्कुल रहना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले गाने को सुना जाए।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो जिम 90.4 एफएम पे। शो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज देखा जाए। और आगे लिखा गया है कि तेरा दिल उदास क्यों है, तेरा दिल उदास क्यों है, तेरी आँखों में प्यास क्यों है, जो छोड़ गया उसे समझदार में, जो छोड़ गया तुझे मजेदार में, उसे मिलने की आस क्यों है, जो दे गया दर्द जिंदगी भर का, वही तेरे दिल वही तेरे लिए खास क्यों है। और इस लाइन को भेजते हैं मनीष रजक। और आगे में शीश पहुंचा हुआ लिखा गया है कि दुपट्टा सरक रहा है तो पिन लगा लीजिए नहीं सरकेगा, बट कमाल के सॉन्ग रहा, मैसेज करती हैं रोशनी। आगे में शीश पहुंचा हुआ है सुपर सॉन्ग, दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है, नाइस, मैसेज करती हैं शबीना। और आगे में शीश पहुंचा हुआ है और गाने का फरमाइश, तो उस गाने के फरमाइश हम पूरी नहीं कर पाएंगे, और नैना शर्मा आप दूसरे गाने के फरमाइश करें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा भी, तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और इस गाने के फरमाइश करते हैं शमीर आलम जंगलिया से, और डेडिकेटेड नाम देते हैं इरफान भाई, कमरान भाई, गुलाम हुसैन, अहमद अली, साहिल भाई, शफिया वसीम, सगुफा करीम, रुबीना नाज, शफाक साजा, हिना हजरा, अनमका गुड़िया, सविता ब्यूटी, सबनम जरीन, सबनम सिद्दीकी, नीतू रोशनी, शबीना, शबा, आशा, निशा, तबू, सजदा, संतरा, और आपको। चलिए हम भी हैं आप सभी के साथ, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

कभी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो रमझिम 94 FM पे शो चल रहा है। इसमें इस फरमाइश का और इस गाने के फरमाइश करने वाले थे शमीर आलम और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने के फरमाइश वेस्ट चंपारण से पहुंचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज शामिल कर ले। मंके सहानी जी, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं भी आपके शो में हाजिर हो चुकी हूँ और मेरा भी SMS को शामिल कर लीजिए। निशा पांडे, तो बिल्कुल स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, काफ़ी प्यारा सॉन्ग, थैंक्स भैया मुझे सुनाने के लिए, मैसेज करती है रोशनी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय जी हमें सॉन्ग सुनना है जब दिल धड़कता है, और इस मैसेज को करती हैं प्रियंका। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हम भी हैं

लाइन में बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार। ओहो, सोनाली मैसेज करती हैं, गाने का बोल देती हैं, दिल बर तो आपकी फरमाइश पूरा करेंगे। जो भी मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, प्लीज़ भजा दीजिए, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। बने रहे हमारे साथ और फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने की फरमाइश सुनते हैं हम सभी रेडियो 94.4 FM पे।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे अगली मिसेज पहुँचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे गाने का बोल स्वर्ग मूवी से दिया गया है, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरी जिंदगी अधूरी। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है थैंक्स फॉर गाना बजाने के लिए, चलिए आपको भी धन्यवाद है मुनकेश जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है सुपर सॉन्ग, मैसेज करती है रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू कैसे हैं, लेट से जुड़े हैं, खेद है पर आपका दिल तो पागल तो नहीं ना है किसी के लिए, पर दिल पर किसी का जोर नहीं है वेरी। और मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया खिखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से, और कहते हैं कि अगर आपसे सच्चा प्यार होता तो वो ज़रूर आएंगे, सच्चा प्यार होगा तो ज़रूर आएंगे, वरना दिखावे का प्यार होगा तो नहीं आएंगे बिल्कुल। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि अब मेरा गाना बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी गाने बजाएंगे, बहुत कम ही समय मिला हुआ है हमें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हेलो सोनू जी मैं अनूप, तो बिल्कुल अनूप जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। बढ़ते आगे मैसेज आते जा रहे हैं तो मैसेज को रोकते हैं, अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

रेडियो रिमझिम 94 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और अभी गाने सुन रहे थे हम सभी स्वर्ग मूवी से मेरे दोस्त लौट के आजा बिन तेरी जिंदगी अधूरी है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सही में ये सच्चा प्यार की पुकार है, दर्द में सच्चे दोस्त की पुकार की पहचान होती है। बढ़िया सॉन्ग मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अनूप जी आज तो पूरी नहीं पाएगी और हमें लगता है कि आपकी फरमाइश हम सुनाए हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है

लिखा गया है, दिल में तुझे बिठाकर। सुरेश जी त्रिवर्मा से जुड़े हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन गाने का फरमाइश तो नहीं पूरी हो पाएगी क्योंकि काफ़ी समय निकल गए हैं और समाप्ति के कगार पे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं प्रियंका जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है, जब दिल धड़कता है महसूस होती है। तो चलिए आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे क्योंकि समय भी हो गए हैं समाप्ति का, और आगे जो भी श्रोतागण मैसेज किए हुए हैं थोड़ा सा सब्र करेंगे और अगले दिन अपने मैसेज को रिपीट करेंगे ताकि हम आपकी फरमाइश सुना सकें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें आप सब रेडियो MGM 94.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said, the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for amendment in this regard. The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation NCDC Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid a row by the opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Radhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China. Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human rights violations being committed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the neighboring country.
4: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression, and more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news across the world. There have been grave violations of human rights, and I think it is time that the international community take note of what's happening there and hold that country responsible for its atrocities.
3: On Indian High Commissioner Dinesh Trivedi meeting Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman, Mr. Jaiswal said, New Delhi has extended an invitation for a bilateral visit as well as for the BRICS outreach session which will be held in the national capital. Protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK are set to go global from Thursday to expose state-sponsored terror by Islamabad. The Awami Action Committee, AAC, has urged Kashmiris across the world to hold rallies and draw international attention to the deadly force being used by the Pakistani establishment against the people of POJK. The AAC has also decided to observe 14th of August as a Black Day, coinciding with Pakistan's Independence Day. US space agency NASA has invited Indian space research organization ISRO to join its moon-based program, building on the two countries' partnership under the Artemis Accords. India and US have agreed to advance discussions for cooperation on open scientific data sharing under the Accords. The ninth meeting of the India-US Civil Space Joint Working Group was hosted by India on the 5th and 6th of this month at the ISRO headquarters in Bengaluru. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country ahead of the 80th Independence Day celebrations, inspiring citizens from all walks of the life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. The movement, which will continue till the 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. And that is the end of this news bulletin.

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
2: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: इतना सवाल लेके बार पूछ ले बू, पहले आपन बताओ तो हम आपन बताओ तनी।
2: अच्छा तो सुन लो, खोल के ना बताए, विचारा के बाद इशारे में समझ लिया।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हाँ हेलो।
1: हेलो
2: जी।
1: नमस्ते।
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: मैम गाना सुनना है।
2: जी जी, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: सावन का महीना।
2: सावन का महीना पवन करे शोर।
1: हाँ।
2: अच्छा जी, और गाना डेडिकेट भी है, बोल रहे हैं गाना किसी को सुनाना भी है
1: जी।
2: बता दीजिए।
1: अपने पति को सुनाना है।
2: अच्छा जी, बढ़िया है। अपने पति का नाम भी बताएंगे? अच्छा, आप सभी ठीक है ना? जी जी। वैसे आप रेडियो कितने दिनों से सुनती हैं?
1: बहुत दिन से सुनते हैं।
2: अच्छा, रेडियो रिमझिम का कौन कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है?
1: आपको यही अच्छा लगता है गाना वाला सॉन्ग है जो दिल में रहता है, बोलो और सुनो।
2: हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए फिर, अच्छा है आपको अच्छा लगा रेडियो रिमझिम में कॉल किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: वेलकम।

0: हेलो
1: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंची 90.4 एफएम में।
1: मैं राजू बोल रहा हूँ गुजरात सिलवासा से।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मैं भी अच्छी हूँ।
1: आप सबने को गाना सुना था मैडम,
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
1: सावन का कोई गाना सुनवा दीजिए नया खेसारी लाल का।
0: अच्छा, और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
1: हाँ हाँ, सभी दोस्तों को और सबने जितने रेडियो टीम वाले हैं हमारे साथ।
0: वैसे रेडियो रिंची को आप कितने दिनों से सुनते हैं?
1: काफी साल हो गया है, बोले तो 5 साल हो गया है सुनते सुनते।
0: अच्छा,
1: हाँ, खाली कॉल के माध्यम से मैं जुड़ता हूँ बस।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, बाकी सब तब कार्यक्रम सुनते हैं। हाँ, मोबाइल के द्वारा सुनते हैं।
0: जी जी, चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए 90.4 FM।
1: ठीक है, थैंक यू मैडम,
0: वेलकम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो 90.4 FM में।
2: मनोरमा मैम?
3: नहीं,
2: भारती जी ने। नमस्ते।
3: नमस्ते,
2: क्या हाल बा? आज रवड़े ड्यूटी बा?
3: हाँ।
2: हम दनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। बहुत बार ट्राई करनी फोन में ना लागल, एक बार लगबो करते ना।
3: अच्छा, अब वही के बताए रिकॉर्ड करत रहनी वही के।
2: हाँ, वो बताए तो कोई ना काहे से कल बहुत परेशान हो गए। 12:30 बजे तक उनको लगबो कही तो बाद में उठल ना।
3: और सब बढ़िया बा?
2: अच्छा ठीक बा। बारिश वरिश होता
3: ना? बारिश नहीं छे अभी।
2: ना चली क्या?
3: चली,
2: लेट चली
3: ना, एकदम टाइम पे चली आज।
2: अच्छा, तो रिकॉर्डिंग फिर से पूरा हो जाएगी?
3: रिकॉर्डिंग पूरा हम 12 बजे तक करें।
2: तो रिपीटे चलत रहे, कई दिन पुराना कालो चलत रहे गाना।
3: और गाना कौन सा सुनेंगे?
2: आज

0: गाना है ना दिन हुआ दीपक दिलदार के, कौन सा टावर पर चढ़े वाला गाना।
1: अच्छा जो टावर वाला सॉन्ग है वही?
0: हाँ, टावर वाला सॉन्ग हमें याद नहीं है, वो गाना भी हमें दिमाग और नहीं किया हो कैसे, खाली टावर वाला याद बा।
1: अच्छा,
0: तो के रही मनोरमा मैम के रही सोनी मैम के रही, चलो ठीक है सब गाना सुना दो।
1: ओके फिर गाना प्ले करते नहीं सुना रहे हैं रेडियो,
0: चलो सुना दो इंतजार।

0: हेलो, सलाम, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 95.4 FM में।
0: जी मैम, कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: जी मैम, लगता है आज फालते दिन है क्या?
1: लग तो रहा है।
0: हाँ वही तो, आवाज चेंज है। दो दिन से नहीं, सप्ताह हो गया आपको, एक सप्ताह इसरो में आए हुए।
1: जी जी,
0: आपका इंतजार था बहुत पहले से इसरो में।
1: अच्छा,
0: एडवांस में धन्यवाद बोलते हैं इसरो में आपको आने के लिए।
1: जी
0: मैम, आज तो 1 घंटा हम कोशिश किए हैं, तब जाकर लास्ट में लगा है।
1: अच्छा, 1 घंटे से लगा रहे हैं आप?
0: जी मैम, आज तो पता नहीं क्या हो गया था, लग ही नहीं रहा था।
1: नहीं, लगातार कॉल आते हैं ना, तब तक नहीं लगता है।
0: मैम तो इतना पीछे कभी नहीं जाते हैं, फर्स्ट बार, मतलब जब से रेडियो में जुड़ते हैं तब से फर्स्ट बार इतना लेट लगा है।
1: अब कॉल रहेगा तो कॉल वेटिंग में जाएगा ना?
0: नहीं, ये भी हो सकता है कि मतलब आप ज्यादा दिन पे आई हैं इसरो में, तो बहुत लोग पूछ रहे होंगे, इसलिए लंबा हो जाए।
1: हाँ हाँ
0: मैम, तो गाना फरमाइश करने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे, यही
1: बता दीजिए,
0: पूछना चाहेंगे यही, मतलब ज्यादा लेट लगा है तो आज नहीं बजेगा?
1: देखना पड़ेगा कि, अब देखिए, आज नहीं तो कल बज ही जाएगा। लेकिन
0: अच्छा मैम, जो जुम्मा

0: बजता है मतलब आज शुक्रवार को, वो वाला तो मतलब रिपीट नहीं चलता है,
1: नहीं
0: क्योंकि हम कभी कभी शाम को नहीं सुन पाते हैं तो रिपीट में मतलब सुनते हैं। तो मतलब मैम गाना का फरमाइश आज यही है, गाना का नाम है बेवफा प्यार की राहों में।
1: अच्छा जी,
0: सुनी होंगी, बहुत ही अच्छा गाना है। उदित नारायण और अलका याग्निक का आवाज है, वही वाला सुनना था।
1: बिल्कुल, और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
0: डेडिकेट रहेगा आपको और मरुर्मा मैम को और सभी सुनने वालों को जितने भी 90s के फैन है। मैम रेडियो में हम मतलब रेडियो जो है ना, तो बस बहुत पहले से हम मतलब हमारा सपना एक था कि रेडियो में हम रेडियो का आवाज बने, लेकिन बन नहीं पाए तो कारण थे, इसलिए जुड़ के अपना गाना सुन के ही एंजॉय करते हैं, क्या कर सकते हैं।
1: चलिए कोई बात नहीं,
0: तो मैम सुनते तो हम डेली कोई भी शो मिस नहीं करते हैं।
1: अच्छा जी,
0: रेडियो से हमको बहुत ज्यादा लगाव है ना मैम।
1: रेडियो सुनना अच्छा लगता है, ये बात अच्छा लगा सुन के।
0: हाँ, और एक सप्ताह से आप आई हैं तो और भी आज अच्छा लगेगा सुनने में शो को।
1: अच्छा,
0: और योर वॉइस योर चॉइस में मेरा मैसेज ही शामिल नहीं करती है, लगता है आप भूल जाती है शो में हमको।
1: नहीं नहीं, शो में किसी को भूलते नहीं है, सबका मैसेज शामिल करते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है।
0: देखिए मैम, 3 दिन से हम मैसेज कर रहे थे पिछले हफ्ते में, आप लास्ट वाले दिन मतलब बजाई थी और बोल रहे थे।
1: कोई बात नहीं, हो जाता है।
0: आज तो चलेगा?
1: हाँ हाँ चलेगा,
0: आप आइएगा।
1: आप वैसे ठीक है फिर?
0: धन्यवाद मैम।
1: ओके, रेडियो रंजन के इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
6: दीर्बा अब्दुल चौहान।
5: और कहाँ से हैं आप?
6: नुनिया टोला से, समस्या के पास।
5: जी जी, कौन से गाने की फरमाइश है?

0: बलवानी कुमार वो भी यूनिट हुआ सर, अमन कुमार यूनिट हुआ था, वो भी सचिन कुमार, रवि कुमार, सब कोई यूनिट हुआ सही है।
1: जी जी, वैसे आप रेडियो रिमझिम कितने दिनों से सुनते हैं?
0: हमको सुनते हुए कम से कम 9-10 साल हो गए। पहले केरला में था, सूरत में थे। आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम भारती है।
0: हाँ भारती, अभी तो नाम आपने सुना था रेडियो में, सुनता रहता हूँ हमेशा।
1: अच्छा जी,
0: मगर आपका नाम भूल गया था मैं। अभी सूरत मैम के, दिव्या मैम के, सब कोई का नाम अभी याद आता है हमको।
1: अच्छा जी,
0: कौन सी मैम है कह रहा है?
1: हाँ हाँ,
0: चलिए कब तक सुना दूंगे?
1: शाम को 5 से 7 के बीच में जो चलता है उसी में।
0: वो तो पता है, क्या पता कहीं
1: आज चलेगा नहीं तो कल चलेगा जरूर।
0: अभी तो पहले केरला से लगाता था, अभी अभी मैं जयपुर में हूँ राजस्थान में। पहले केरला रहता था तो वहाँ से फोन लगाता था, वहाँ से बात कर चुका हूँ। अभी दिल्ली आया हूँ, जयपुर में, राजस्थान है, यहीं से अभी फोन लगा रहे हैं।
1: जी जी,
0: आज फोन लगाने के लिए छुट्टी मार दिया हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा दिन हो गया था, कम से कम 2-3 महीने हो गया मेरे को फोन लगा कर बात किए हुए। आज छुट्टी मार दिया मेरा, आपका 2300 रुपया, 2350 रुपया मेरा गया।
1: नहीं छुट्टी नहीं लिया जाता है, उसी में कॉल कभी कर लीजिएगा, हो जाएगा।
0: टाइम नहीं मिलता है, सुबह 8:30 से 8:30 बीतती है, 8:30 बजे आते हैं, 8:30 बजे रात को आते हैं।
1: अच्छा,
0: इसीलिए तो टाइम नहीं मिलता है। संडे के दिन छुट्टी रहता है तो संडे के दिन तो चालू नहीं रहता है।
1: नहीं,
0: संडे के दिन तो क्या बोलते हो जो सवाल है वो करते हैं, तो वही टाइम नहीं मिलता है मेरा। 2350 रुपया अब गया, वो भी छुट्टी मारने सोचा की आज बात करूंगे मेरे साथ, 2350 रुपया चला गया, कोई बात नहीं। मगर अपने गोपाल बोलते वहाँ फोन करूंगे, बात करेंगे, आज गाना मांगूंगी।
1: जी जी, चलिए कोई बात नहीं, फिर गाना
0: ठीक है।
1: हाँ हाँ, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
0: ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जिम 90.4 FM में।
1: वेलकम। नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: हम अरविंद कुमार बात कर रहे हैं त्रिवेणी गंज सुपौल बिहार से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, अपना सुनाइए।
0: हम सब भी अच्छे हैं।
1: मौसम उधर का कैसे है?
0: अभी तो मौसम हल्की गर्मी भी है, हल्का धूप था, अभी तो नहीं है, धूप आ रहा है, जा रहा है।
1: मैडम मेरे साथ तो काफी बारिश हो रहा है घंटे से।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया है, बारिश हो रहा है तो।
1: मैडम एक सॉन्ग का फरमाइश है आज मेरा,
0: बता दीजिए।
1: सारी दादी यादव का भोजपुरी सॉन्ग है, प्रिया ड्राइवर हो बोलबम सॉन्ग है, प्ले कर दीजिएगा और डेडिकेट रहेगा जितने लाइव अभी दोस्त हमारे सुन रहे हैं सभी को, खास करके आपके लिए।
0: ओके जी, चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ओके, धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो मैडम
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: स्वागत है रेडियो रिमझिम में। देखिए वही हम गोपालगंज से भी सुन रहे हैं गानों। हेलो मैडम, सोनी है?
5: नहीं, भारती बोल रही हूँ।
6: सोनी कहाँ से मिल रही है आजकल?
5: ये तो मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं मालूम है, ये हमारी मैनेजमेंट बताएगी आप।
6: शादी नहीं है
5: जी।
6: मेरा गाना फेमासी नए रहे, करीब 15-20 गाना दिए हुए, कोई नहीं बजता।
5: गाना नहीं बजता है?
6: कहाँ बज रहा है? जैसे 6 महीना से हम चला रहे गाना, तो कहाँ आ रहा है तो गाना मेरा?
5: 6 महीने से नहीं आ रहा है?
6: नहीं, बीच में एक दो बेरी आया था, इसके बाद कहाँ आ रहा है?

0: कितने बजे सुनते हैं?
1: अरे हमारा 24 घंटा चालू रहता है गोपाल रेडियो।
0: तो नहीं, ये शो ना 5-7 के बीच में चलता है, उस समय सुनिएगा, क्योंकि उस समय इस शो में जितना कॉल होता है सब बजता है।
1: हम रेडियो बजा रहे हैं, रेडियो।
0: हाँ, रेडियो का ही बात कर रहे हैं। तो ये जो अभी आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये 5 बजे से 7 बजे के बीच बजेगा।
1: अच्छा, तो हम कोडरमा से बोल रहे हैं, झारखण्ड कोडरमा। झारखण्ड कोडरमा सतगावा टोली से बोल रहे हैं
0: जी।
1: मेरा नाम है रविकांत कुमार, मेरा फरमाशी है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
0: मूवी है ना ये, गाना इसमें का कौन सा सुनना है?
1: गाना भाई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे,
0: और गाना भी है?
1: यही इसी में ही गाना है।
0: ओके, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: 11 बजे से मेहनत कर रहे हैं लोग।
1: अच्छा
0: हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत की है।
1: कौनो बात ना
0: सही समाचार
1: ठीक है, आप बताइए।
0: हाँ भी ठीक है, करीब करीब ठीक है हुआ।

0: हवा चल रहा है, ठीक हो
1: गया। हाँ गाना बता दें कौन सा सुनने बड़े हुआ।
0: गाना हमको पता, ये फूल तो याद नहीं है लेकिन थोड़ा सा याद है। एक बंजारा बंजारा आए जीवन के गीत सुनाए। हाँ इसी को
1: गाना सुनाए तो बात क्योंकि।
0: हाँ पहले आप सुनिए बाद में पूरा रिमझिम के सब सुनने वाले श्रोता है सब लोग।
1: अच्छा जी चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4।
0: हाँ कब कब सुने गए
1: गाना आज ना तो कल बाद जाए।
0: काल ठीक ठीक है ठीक।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो,
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। नमस्कार,
6: मनीष राजा भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ।
5: जी जी, कैसे हैं आप?
6: ठीक है, अपना बताइए।
5: हम भी ठीक हैं।
6: क्या हो रहा है?
5: कुछ नहीं, बस आपसे

0: बातें हो रही
1: है। गाना सुनना है, सुना दीजिएगा।
0: कौन सा गाना?
1: बोलबम का गाना सुनना है।
0: और गाने के बोल?
1: बोलबम के कोई भी गाना सुना दीजिए, खेसारी लाल यादव का पुराना गाना।
0: और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
1: सबसे पहले आपको और पूरा रेडियो सुनने वाले बताओ।
0: जी जी, और सब ठीक है?
1: और सब ठीक
0: जी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में।
1: हेलो,
0: हाँ बोलिए।
1: हेलो,
0: हाँ नाम बता दीजिएगा अपना।
1: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ मैं, देवभूमि उत्तराखंड से।
0: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, जकास है, बिंदास है, मस्त है।
0: अच्छा,
1: बारिश हो रहा है। बारिश तो सुबह से हो रहा है, बारिश तो अक्सर हो जा रहा है अभी।
0: हाँ, उधर तो ज्यादा होता ही है शायद बारिश।
1: बहुत बारिश होता है, बहुत लगातार बारिश हो रहा है बहुत दिनों से। कल थोड़ा सा राहत मिला था।
0: अच्छा जी, और सब बताइए, और सब हाल चाल?
1: बहुत बढ़िया है। हमने कहा आज लगाता हूँ फोन आप लोगों से बतियाने के लिए,
0: कभी कभी बात हो जाना चाहिए।
1: समय की टाइम है ना, मिल पता ना आप लोगों को, टाइम 11 बजे 12 बजे के बीच में है, और अब उसमें हमारा हमारा काम रहता है।
0: अच्छा,
1: हाँ, इस चक्कर से हमें जल्दी काम निपटाना पड़ता है। अभी बस काम निपटा लिया हूँ तो हमने कहा टाइम है 10 मिनट देखता हूँ, क्या पता बात हो जाए।
0: तो कॉल 12:30 बजे तक चलता है।
1: अच्छा, 12:30 बजे चलता है, ठीक हो गया। अब तो मेरे पास भरपूर टाइम है, 1 घंटे में तो कर लूंगा मैं। हमें इतना पता था कि 11 से 12 होता है, इसलिए मेरे दिमाग में 12 बजे तक ही था।
0: 11 से 12 बजे तक होता है,
1: ठीक हो गया। तो हमारे चलिए ठीक हो गया।
0: बता दीजिए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गाना चुनरी चुनरी करके आता होगा ना। हाँ, वही वाला।
0: और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
1: हाँ, कामरान भाई को, उत्तम सोनी को, और सगीर आलम, परजू भाई, और जितने भी सुनने वाले हैं, आप भी हैं, सोनी जी हैं, सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी बिल्कुल। तो फिर गाना

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
3: मैं ठीक हूं।
2: हाँ हाँ, हम ठीक हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं?
3: हम तो ठीक हैं
2: जी। नाश्ता हो गया है आपका?
3: हाँ हाँ मैम, नाश्ता हो गया, दुकान पे हैं।
2: अच्छा जी। हाँ। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
3: साजन का घर। सावन आए, बादल आए, बुलबुल चलते, फूल खिलाए, यही गाना सुनना।
2: अच्छा जी, और गाना किसी को

0: सुनाना भी चाहते हैं?
1: अजय प्रजापति हैं, लुकमान भाई हैं, और कुलदीप भाई हैं, अमित भाई हैं, और रवि हमारे रवि शर्मा जी हैं।
0: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं सुनते हैं रेडियो।
1: हम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के बोल रहे हैं
0: जी।
1: अयोध्या डिस्ट्रिक्ट।
0: नाम आपका बता दीजिए।
1: सूरज प्रजापति
0: जी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 FM में।
1: थैंक यू। और आपको नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और सावन महीने की दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ सभी लिसनर्स लोगों को भी।
0: जी जी।
1: सब रेडियो रिमझिम परिवार सब ठीक है?
0: सब कुछ ठीक है। आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, महादेव की कृपा है। आरजे सोनी जी कहाँ है आजकल? तो उनका शो भी नहीं आ रहा है, आप आ रहे हैं उसमें, या फिर उनके शो पे आपका कब्जा हो गया है लग रहा है?
0: नहीं, ऐसा नहीं। अब सर जिसको बोल देते हैं वही काम वही करना होता है हम लोगों को।
1: जी जी, ये जुड़ रहे हैं प्रोग्राम में, मेरा मैसेज शामिल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों।
0: नहीं तो सबका मैसेज शामिल करती हूँ।
1: तो आज तो सोचे हैं कि आज मैसेज नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट कॉल ही करेंगे। और उसमें जानती हैं, उसने कॉलिंग का ही प्रोग्राम उसको कर दिया जाए ना तो वो अच्छा नहीं लगे, मैसेज अच्छा लगता है।
0: हाँ, मैसेज सबकी बातें शामिल करना होता है तो अच्छा लगता है, कौन क्या बोला है क्या नहीं बोला है उसको पता चल।
1: और उसमें क्या होता है कि आप लोग को थोड़ा टाइम भी मिलता है और लगातार कॉलिंग हो तो फिर तो ठीक है। गाना आज सोमवार का ही कोई सुना दीजिए, पवन सिंह का गाना सुना दीजिए, एक बहुत वाले गाना आया था कि हमर जान भूखल बाड़ी, ऐसा ही था, सोमवार का ही गाना वही वाला सुना दीजिएगा।
0: गाना सुनाना भी चाहेंगे किसी को?
1: सभी लोगों को और खास करके कुंवारे लोगों को।
0: अच्छा जी,
1: ठीक
0: चलिए ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो। हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
5: नमस्ते दीदी।
6: नमस्ते,
5: गाना सुनेगा
6: जी? नाम बता दिया अपन,
5: रामकेश।
6: और कौन सा गाना सुनेगा?
5: खेसारी लाल के बंधन फिल्म का गाना। नहीं,
6: कौन सा?
5: खेसारी लाल के बंधन फिल्म का गाना।
6: अच्छा, मतलब हमें तो बहुत सारा गाना बो, मैं कौन सा गाना?
5: कौन बजा दे गाना? बस याद नहीं किया, कौन सुना दे जाना अच्छा।
6: अच्छा जी, गाना सुनाओगे बाकी? गाना मतलब क्योंकि सुनाओगे
5: बाटा सब लोग?
6: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनत रही रेडियो रंजन 94 FM।

0: हेलो
1: हेलो रेडियो रिमझिम।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ, गोपालगंज कार्यालय वार्ड नंबर 2 से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल सही है। गाना हमको सुना दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: ये नाम फिल्म का गाना है, ये अपना CI है। ये ही गाना सुना दीजिए।
0: और गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: बस आप अभी परिवार को रेडियो रिमझिम का जितने श्रोतागण है। कल गाना सुनाएंगे।
0: ये आपको शो चलता है शाम को 5 से 7 बजे और सुबह में रिपीट होता है 9 से 11।
1: जी जी, बहुत रिया बहुत मेरी की बात है कि कॉल लग गया, नहीं तो 2-3 बार ट्राई किया, लगा ही नहीं है।
0: कभी कभी नहीं लगता, बिजी रहता है ना, इसीलिए। ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
3: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी जी हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: जी जी धन्यवाद मैडम।
7: हेलो
6: जी। हाँ मैडम नमस्ते।
7: नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
6: मैडम मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा हूँ, गांव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से।
7: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: बस मैडम बहुत बढ़िया है हम तो, आप बताइए आप कैसी हैं?
7: हम सब भी अच्छे हैं।
6: जी जी, और मौसम कैसी है मैडम आपकी तरफ?
7: मौसम तो अभी ठीक है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा मतलब ठंडा, एकदम नॉर्मल है।
6: जी जी बिल्कुल, इसी तरह का मौसम तो अच्छा लगता है मैडम।
7: और बताइए, और सब ठीक है आपके यहाँ?
6: हाँ मैडम, अपने यहाँ सभी लोग बढ़िया हैं। और अपने यहाँ क्या है कि अभी लगातार बारिश हो रही थी 3-4 दिनों से, और कल और आज 2 दिन अभी पानी रुकी हुई है।
7: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: मैडम फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु, और गीत के बोल हैं झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
7: जी जी, गाना किसी को सुनाएंगे भी?
6: जी मैडम, अपने रेडियो मित्र है सरगुजा रेडियो श्रोता संघ के सभी साथी रहेंगे इस गाने में शामिल, और साथ ही रेडियो रिमझिम समय मित्र।
7: जी जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: भारती
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: अच्छा, मैं तो आपका रेगुलर श्रोता हूँ, लिसनर। तो मैं बंगाल से गोपाल बोल रहा हूँ, आप जानते हैं मैं व्हाट्सएप अधिकारी हूँ। तो आपके साथ आज पहली बार बात हो रहा है। आज तो नहीं से तो बात मेरा बहुत पहले से भी हो गया, जान पहचान उससे भी है। तो मैं बंगाल से बोल रहा हूँ, मेरा तो गाँव तो है, आप तो सिलीगुड़ी नाम सुने हैं?
0: जी जी।
1: सिलीगुड़ी से आगे इधर जो विधाननगर बोलता पाइनएप्पल से यहाँ पर फेमस है ना, मैं वहाँ पर रहती हूँ। कैसे है, बोलिए।
0: हम सब ठीक है, आप बताइए, आप सब कैसे
1: हैं? हम भी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपसे बात करने के लिए मैं इसलिए कह रहे थे, भारती जी से बात तो नहीं हुआ है। देखिए आज कॉल भी मेरा लाइन भी मैं पा गया हूँ, तो गाना भी तो रिक्वेस्ट मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपका वो प्रोग्राम जो बहुत अच्छी तरह चल रहा है ना, यहाँ पर बंगाल में नहीं सुनते, लेकिन बंगाल मैं जो सुनते हूँ ना, मेरा साथ बहुत दोस्त मेरा सुनते हैं, उसे बोलते हैं बार हिंदी में पड़ी बार, तो हम वो जो सब मोबाइल ऐप में सुनते हैं ना, मैं भी तो मोबाइल ऐप से सुनती हूँ, रेडियो भी है बस, लेकिन रेडियो में ना क्लियर नहीं आ रहा है, 94.0 जो ये हर्ट्ज है ना, वो क्लियर नहीं।
0: लेकिन ऐप के जो द्वारा सुनते हैं उसमें तो क्लियर आता है।
1: हाँ, वो तो क्लियर आते है, वो तो नेट के तरह चल रहा है ना, नेट रहेगा तो होगा नहीं होगा। मेरा घर में तो वाईफाई है लगा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो मैं अभी दुकान से बैठ के मेरा गाना सुन रहा हूँ, लेके इसलिए फोन किया।
0: अच्छा जी, तो बता दीजिए गाने की फरमाइश।
1: गाने का फरमाइश है, अमिताभ बच्चन का एक तो मूवी है ना कालिया, कालिया मूवी का जो जहाँ भी तेरी नजर है मेरी नजर मूवी का गाना तो सुना दीजिएगा, किशन कुमार की आवाज में।
0: जी जी।
1: बहुत बढ़िया फिल्म है वो,
0: एक
1: टाइम में बहुत फेमस हुआ था, हम लोग तो पुराना फिल्में देखे हैं ना। और ये प्रोग्राम तो आपको तो 5 बजे से चलेगा ना?
0: हाँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये मेरा तो गाना तो सबकी डेडिकेट करते हूँ आप डीजे परिवार को, आपको भी। तो एक दिन मेरा गाँव आए ना, विधाननगर सिलीगुड़ी के आए ना,
0: नंबर
1: तो है चला है। आप ये स्टडी करते है क्या, पढ़ाई करते है?
0: जी स्टडी भी है, स्टडी।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे है।
0: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
1: ओके ओके, थैंक्स,
0: वेलकम।

तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन। सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बेटा तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खातिर हम भागल ना है। आ जदि हमरा के छोड़ के गइलू तब बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: बेटा, जितना तोहरा से रात में बात कोइले बनी ना, उतना केहू औरी खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हो
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: ना होता रो।
1: अरे एक करे जा, हम बरसी ना, खाली गर्जे वाला बादल ना होई, आ जदी हमारा के छोड़ के गईलू, तब बुझ ली हो।
2: हम संतोष पागल नहीं।

0: होगा कि हम ग्रेड ए पोल नहीं पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट, कारवा मिनी।
2: सारे गामा कारवा इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ।
3: बदन पे सितारे लपेटे हुए

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: All right.

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज विहार ने नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: जीवन बिहारी।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।